क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: You are listening to Radio Fazer on 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinentendale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
3: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
3: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोज़ो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े
3: पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया।
3: बारे बार बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा की मदद ली थी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने दोस्ताना माहौल तेज से जल्दी कम कर देना। सोने ते स्वागा ये क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 77.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
7: फजान 97.1 FM,
6: आई लव इट।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेडन किंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 077152।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 से रात के तक, एक्सेलसियर नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंगम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: Music never sounded better.
7: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

0: It's commercial time.
1: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: Zabardast hits.
11: Music never sounded better.
5: Fazan 97.1 FM.
11: I love it.

और निखार। ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार, तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर चलती वही है जो चाहता है।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
2: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं, आसमान को देखते हैं, या मौला हक इलाही।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
2: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब। You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: It's commercial time.
2: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
3: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
2: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा।
4: जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
5: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
4: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
5: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
4: और अंगारों पे प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
5: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
2: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
5: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
6: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
5: पिशावरी डेरा।
7: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
5: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
5: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
5: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
5: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
5: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
8: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
9: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती, चाहे ढल जाए पूरी।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाए एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771529779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड DAB।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
9: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
9: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
2: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

आसमानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसें चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB.

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
2: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM.

0: ठहरी है जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
9: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
5: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
9: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
5: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात Faza 97.1 FM और DAB पर।
9: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
10: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू। जमीन पे चलते हैं, आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। अगर तुम

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB.

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापस नहीं आती।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।

ये तख्तो ताज सब धरा रह जाएगा जब मौत का फरिश्ता तुझे लेने आएगा, न कोई साथी

0: खैरी है जरा ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: लासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
7: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM.

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापस नहीं आती।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
11: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
11: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
11: You are listening Islamic Transmission on फजा 97.1 FM and DAB.

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही।

0: वेल लिसनर्स, इस वक्त वक्त हुआ है शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।
1: खता हुई तो खता को मेरी छुपाया है तुम।
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
4: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
5: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
4: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
5: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
4: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
5: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
4: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
5: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
4: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
5: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
4: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
6: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो टीवी डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे। तो लिसनर्स, ये सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, सो उनको भी मालूम हो कि वो किस इंसान की आवाज़ को ट्यून कर रहे हैं। सो मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा कलाम? और वैसे ही अगर बात हो कलाम की, तो आफ्ताब परवीन साहिबा की आवाज़ में कुछ ऐसा जादू है कि जब भी मैं उनका कोई भी कलाम सुनती हूँ तो मुझे वो स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और इट्स लाइक अ कनेक्शन दैट इज़ बिल्डिंग फ्राम योर गॉड। सो आफ्ताब परवीन साहिबा के तमाम तरह कलाम बहुत अच्छे होते हैं। आप सभी को भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो सूफीज़म में बेस्ट हो, तो आप हमेशा इनके कलाम सुना करें। सो डियर लिसनर्स, बात करते हैं ज़रा आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आई नो अभी तक हमारे सभी लिसनर्स प्रॉपरली फ्रेश हो चुके होंगे और दिन का प्रॉपरली आगाज़ भी हो चुका होगा। सो जैसा कि है आज फ्राइडे, और फ्राइडे के हवाले से कहा जाता है कि फ्राइडे इज़ द बेस्ट डे फॉर ऑल द मुस्लिम कम्युनिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो जैसे कि फ्राइडे एक ऐसा दिन है जिसमें आपको रिमाइंडर मिलता है ना सिर्फ इस चीज़ का कि वीकेंड आने वाला है, बल्कि इस चीज़ का भी कि अगरचे आप इस दुनिया में आए हैं, दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, और आप किस मकसद के तहत अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इंसान के लिए ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगरचे उसके गॉड ने उसे इस दुनिया में भेजा है, तो किस मकसद के तहत भेजा है। जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि हम दुनियावी ज़िंदगी को बसर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, ठीक उसी तरह से हमारी एक स्पिरिचुअल लाइफ है। सो उस ज़िंदगी को भी बसर करने के लिए हमारा एक मकसद है। सो बेसिकली आप में हम सब इस दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि हम अपने गॉड की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, अपना एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर सकें और दुनिया में अच्छे अच्छे काम कर सकें। लेकिन समहाउ हम क्या करते हैं कि अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी में इतना बिज़ी हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि हम इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब बातों के बारे में सोचें। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मंडे से लेकर थर्सडे तक हम करते हैं दुनिया के काम काज, दुनिया की चहल पहल। सो फ्राइडे का दिन एक ऐसा दिन होना चाहिए जिसे हमें एसोसिएट करना चाहिए स्पिरिचुअली, यानी कि इस दिन हमें एक मुख्तस वक्त निकालना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने दिन को अच्छे कामों में, अच्छी चीज़ों में सर्व करें। क्योंकि अगरचे आप पूरा हफ्ता उस तरह से नहीं टाइम दे पाते, लेकिन अगर आप एक दिन सच्चे दिल से किसी काम का अहद करेंगे और फिर दिल से उसको करेंगे, तो ज़रूर वो बहुत अच्छा होगा और आपका ये कनेक्शन जो थोड़ा सा वीक हो चुका है वो भी मज़बूत होगा। सो डियर लिसनर्स, जैसा कि है आज है फ्राइडे, और हमेशा की तरह हर फ्राइडे को मैं आप सभी से कोई ना कोई अच्छी पॉजिटिव बात शेयर करती हूँ। सो आज आइए मिलकर एक छोटा सा अहद करते हैं कि आज से हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगरचे हम अपनी ज़िंदगी में जितना मर्ज़ी बिजी हों, जो मर्ज़ी काम कर रहे हों, जितना भी मुश्किल टफ रूटीन चल रहा हो, लेकिन हम एक काम जो बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो है झूठ। सो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छाई की तरफ लेकर आएँ, अच्छे कामों की तरफ लेकर आएँ, तो सबसे पहले हमें छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना होगा। सो आज के दिन मिलकर ये अहद करते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम झूठ से बचें और झूठ बिल्कुल भी ना बोलें। सो ये रहा मेरा आपसे एक अहद। सो आप भी मुझसे ये अहद कर सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं 0115710091 इस नंबर के थ्रू। सो डियर लिसनर्स,
ना सिर्फ आप मुझसे बातें कर सकते हैं बल्कि इस नंबर के थ्रू आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह के कलाम पसंद हैं और क्या सुनना चाहते हैं। सो पूरी कोशिश यही की जाएगी कि शो में वो सभी कलाम शामिल किए जाएं जो कि आप सभी को पसंद हो और वही तमाम तर मौजूद पर गुफ्तगू की जाए जो कि हमारे लिसनर्स की फेवरेट हो। सो आइए इसी खूबसूरत सी बात पर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम और कलाम के उस पर स्टार्ट करते हैं आज का डीवा डायलॉग का फर्स्ट सेगमेंट।

सो बेसिकली जिंदगी आजकल इस कदर फास्ट हो चुकी है कि हम इस जिंदगी में इतना तेजी से चलते चले जा रहे हैं कि अक्सर औकात हमें इस चीज़ का भी टाइम नहीं मिलता कि हम थोड़ी देर रुक जाएं, खुद को समझें और अपने अंदर की आवाज़ को जानने की कोशिश करें। सो आज के इस खास सेगमेंट में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो ऐसे ही डीप और प्रैक्टिकल कोट्स जो कि आपके दिल को ना सिर्फ सुकून देंगे बल्कि जिंदगी को एक नया पर्सपेक्टिव भी। सो टेक अ डीप ब्रीथ, सिट बैक और आइए चलते हैं आज के पहले कोट की जाने। सो आज का जो हमारा फर्स्ट कोट है, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ ग्रोथ एंड पर्सनल प्रोग्रेस। आपने अक्सर देखा होगा कि हम दिन रात दूसरों की कामयाबी को देखकर परेशान से होते रहते हैं और दिल में समटाइम्स ऐसे ख्याल भी आते हैं कि वो मुझसे कितना आगे निकल चुका है, मैं कितना पीछे रह चुका हूँ, और हम अपनी आधी से ज़्यादा एनर्जी तो दूसरों के साथ कंपैरिजन करने में ज़ाया कर देते हैं। सो इस बारे में किसी ने क्या खूबसूरत सी एक बात कही है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसे शो में शामिल किया जाए। सो द फर्स्ट कोट सेज, Flowers don't think of competing with the flowers next to them. They just bloom. So, इस छोटे से एग्जाम्पल में कितनी गहरी बात छुपी हुई है कि फूल कभी अपने आसपास के पड़ोस के फूल के साथ मुकाबला नहीं करते और ना ऐसा सोचते हैं कि ये फूल मुझसे पहले ग्रो कर गया। वो बस अपनी पूरी ताकत से खिलते चले जाते हैं। So my all the listeners and lovely divas, just think about this for a second. So my dear listeners, gulab ka phool kabhi chameli se nahi kehta ki tum zyada khoobsurat ho, tumhara rang zyada pyara hai ya phir tum jaldi grow kar rahe ho. Har phool ka apna waqt hota hai, apni khushboo hoti hai aur apna ek husn hota hai. सो इसी से हम सभी को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम सबकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपनी ज़िंदगी का मुकाबला दूसरों की ज़िंदगी से करने लग जाते हैं। दूसरा आपका इससे मुकाबला सिर्फ उसी शख्स से है जो आप पिछले साल से या फिर पिछले महीने थे। अपनी एनर्जी को इस रेस में मत ज़ाया करें कि कौन आपसे आगे निकल चुका है या आप किस से कितना पीछे रह चुके हैं। अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने स्किल्स पर काम करें और अपना रास्ता खुद तलाश करें। जब आप खुद पर फोकस करेंगे तो आप फिर बिल्कुल उन फूलों की तरह बन जाएंगे जिन्हें आसपास से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने कामयाबी में और अपने आगे बढ़ने में मगन रहते हैं। सो वेल लिसनर्स, ये था आज का फर्स्ट कोट एंड आई होप आप सभी को ये कोट अच्छा लगा होगा। सो कोट बेसिकली ये कहता है कि आपको कुछ ऐसा बनना है कि आप खुद की कामयाबी में खुद पे इतना मसरूफ हो जाएं कि आपको नज़र ही ना आए कि आपके आगे पीछे आसपास क्या हो रहा है। सो कुछ इसी तरह से है हम सभी की ज़िंदगी में। हम तभी जब दूसरों की तरफ ध्यान देते हैं, दूसरों में फोकस करते हैं, तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ पाई जाती हैं जिनकी वजह से हम अपना सारा फोकस दूसरों की जानिब रखते हैं, दिन रात दूसरों को देखते रहते हैं। लेकिन अगर हम खुद में ही एक मुकम्मल इंसान बन जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हमें ज़रूरत महसूस होगी कि हम किसी दूसरे को देखें या फिर ये जानने की कोशिश करें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। सो वेल, ये एक पॉजिटिव सी छोटी सी बात थी जो कि आज सुबह अचानक मेरी आंखों के सामने से गुजरी। सो मैंने सोचा कि आज इसे शो में लाजमी शामिल करूँगी क्योंकि हमेशा से मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि डीवा डायलॉग में हम थोड़ी पॉजिटिविटी की बात करें, थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े तमाम तर मौजूदात को डिस्कस करें और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हमारे नेगेटिविटी को लेकर आ रही हैं, उन्हें थोड़ी देर के लिए साइड पर कर दें। ये तो बात होगी ओवरऑल ज़िंदगी के हवाले से। अब ज़रा बात करते हैं, जैसा कि आज है जुमातुल मुबारक, सो आज के दिन के हवाले से आपको खुद की स्ट्रेटजीज कुछ इस तरह से बनानी चाहिए कि पूरे दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम सही 10 से लेकर 20 से 30 मिनट तक
एक ऐसा वक्त मुकर्रर करें जिस वक्त में आप इबादत करें, अपने परवरदिगार से बातचीत करें, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बेस्ट इबादत होती है दुआ। और दुआ हमें इस तरह से करनी चाहिए कि हम यूँ महसूस करें कि हम अपने गॉड से बात कर रहे हैं, हम उनके बिल्कुल करीब हैं और उन्हें बिल्कुल ओपनली होकर अपने तमाम तर ज़िंदगी के मामलों को आगाह करें। अच्छा, दुआ में फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती, दुआ में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि आप फॉर्मल हो, लाइक जिस तरह आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रही हैं जिसको आप जानते नहीं, लेकिन आप तो उनसे बात कर रही हैं जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने आपको पैदा किया। सो, जब आप अपने तमाम तरह ज़िंदगी से रिलेटेड, आसपास की ज़िंदगी से रिलेटेड हर तरह की मालूमात अपने गॉड से शेयर करेंगी, सो यू विल सी के किस तरह से अगर आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ का बोझ है तो वो ऑटोमेटिकली कम होना चला शुरू हो जाएगा, और फिर इसी तरह से आपको बहुत अच्छा फील होगा, माइंड रिलैक्स होगा और ज़िंदगी मुतमिन होगी। बाज़ अवक़ात ऐसा होता है कि हम अपने मेन रास्ते से हट जाते हैं, ट्रैक से थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं और फिर हम ऐसा सोचते हैं कि अब हमारे पास वापसी का रास्ता नहीं है। बट ऑनेस्टली हमेशा आप सभी के लिए वापसी का दरवाज़ा खुला रहता है। ये हम इंसानों की थिंकिंग होती है कि नहीं, अब तो मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने अपने गॉड को याद नहीं किया, प्रे नहीं की, दुआ नहीं की, तो क्या अब वो मेरी बात सुनेंगे या क्या वो मुझे उस तरह से आंसर करेंगे जिस तरह से वो बाकियों को आंसर कर रहे हैं। तो ये सब हमारे माइंड के मिथ होते हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और अगेन इसी तरह फोर्स करते चले जाते हैं कि, और फिर ये जो एक डिस्टेंस होता है ना, ये मज़ीद ज़्यादा होता चला जाता है। सो आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर क्या करना है, हमने इस डिस्टेंस को करना है कम। अगर किसी चीज़ की वजह से या फिर किसी सिचुएशन की वजह से हमारा ये जो कनेक्शन है थोड़ा सा वीक हो चुका है, तो हम मेहनत करके इस कनेक्शन को दोबारा से बिल्ड कर सकते हैं। और किस तरह से, आज के दिन ही से, क्योंकि आज का दिन इस्लामिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। सो अगर आप का भी कनेक्शन हो चुका है थोड़ा सा वीक, तो आज एक टाइम है, मौका है, आप वापस से इसे मुरम्मत कर सकते हैं, रिबिल्ड कर सकते हैं, और वापसी का दरवाज़ा तो हमेशा से ही सबके लिए ओपन रहता है। सुबह साथ से अहद करें कि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त मुकर्रर करेंगे, एक ऐसा वक्त जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, अपनी ज़िंदगी को अच्छाई में, अच्छी चीज़ों में सर्व करें, और फिर जिस तरह के भी बुरे बुरे काम या फिर नेगेटिविटी है, दूसरों से जलन, हसद, ये ना आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी से रिमूव हो जाएगी जब आप खुद को पॉजिटिविटी की तरफ और नेचर की तरफ लेकर आएंगे। लवली डिवाइस, ये तो हो गई ज़रा आज के दिन के हवाले से बातचीत। अब ज़रा जानते हैं कुछ आपसे रिलेटेड भी गपशप। सो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा सा, ज़बरदस्त सा DIY मास्क, जो कि हमारी डिवाइस को बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर है, क्योंकि आजकल जिस तरह से मौसम तब्दीली खा रहा है तो समटाइम्स स्किन बहुत ही ज़्यादा डल और ड्राई हो जाती है। सो जितने भी लोग हैं जो इस चीज़ का शिकार हैं कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, पैची है, और इस तरह के मौसम में भी उन्हें ऐसा फील होता है कि स्किन क्रैक कर रही है, सो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाली है। सो अगर आप कोई भी काम कर रही हैं या आपका फोकस है कहीं इधर उधर, तो उन तमाम तर कामों को, चीज़ों को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दीजिए, क्योंकि मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी, ज़बरदस्त सी ऑर्गेनिक रेमेडी। ओहो, अभी तो मैंने टाइम की तरफ देखा ही नहीं और अभी मेरी अचानक से नज़र पड़ी टाइम पे। सो दी लिसनर्स, अभी वक्त हुआ है शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो फिलहाल के लिए तो इस ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार, और मेरी जितनी भी लवली लिसनर्स हैं, डिवास हैं, आप सब रेडी हो जाएं, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही अच्छी ज़बरदस्ती रेमेडी। सो तब तक के लिए आप हमारे संग, यानी रेडियो फिजा 97.1 FM के संग जुड़े रहें, बने रहें, एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कढ़ाई की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम NG72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड ऐप।
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
6: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड ऐप। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो टीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे। जी तो लिसनर, जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, अपनी सभी डिवास के लिए एक बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से DIY मास्क से रिलेटेड, सो अब उस मास्क की रेसिपी आप सभी से शेयर करती हूँ और साथ ही साथ ये भी बताती हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं दरकार और आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक अदद खूबसूरत सा कलाम, सो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम। कलाम के उस पार होती है मुलाकात और फिर स्टार्ट करेंगे DIY मास्क।

से तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा कलाम? सो कलाम तो हमने सुन लिया और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि कलाम कुछ इस तरह से था कि जब आप इस तरह के कलाम सुनते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली माइंड तो एकदम से फ्रेश हो ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ सोल को भी एक रिमाइंडर मिलता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, आने का मकसद क्या है और किस पर्पस की तरफ हमने चलना है। सो माई गर्लीज, आपके लिए जो एक DIY मास्क में लेकर आई हूँ, सो बेसिकली ये उन सभी लोगों के लिए है जिनकी स्किन ड्राई है, फ्लेकी है और बहुत ही ज़्यादा डल हो चुकी है। सो अब हम बनाएंगे एक 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक फेस मास्क जो आपकी स्किन को इंस्टेंटली हाइड्रेट करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑल यू हैव टू नीड इज 3 सिंपल बेसिक इन्ग्रीडियंट्स। अच्छा, ये वो इन्ग्रीडियंट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होते हैं और आपके किचन की जीनत होते हैं। सो द फर्स्ट इन्ग्रीडियंट इज मैश्ड बनानास। आप हाफ एवोकाडो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एवोकाडो चूँकि ईजीली अवेलेबल नहीं होता और आई नो कि हर घर पर भी नहीं होता, सो आप सिंपली मैश्ड बनानास यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बनानास काम करते हैं डीप मॉइस्चराइजेशन का और स्किन को अंदर से हाइड्रेट और प्लम्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड इंग्रेडिएंट की। द सेकंड इंग्रेडिएंट इज ऑर्गेनिक हनी। सो हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जो कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ना सिर्फ स्किन को टेक्सचर को रिमूव करता है बल्कि स्किन में एक किस्म का ग्लो भी लाता है।

हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है रॉ मिल्क या फिर योगर्ट। सो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। 1 टेबलस्पून फॉर स्मूथ टेक्सचर। वेल, ये थे इंग्रेडिएंट्स। अब जरा स्टेप बाय स्टेप मेथड की जाने बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज टेक अ हाफ बनाना एंड उसे अच्छी तरह से आप मैश कर लें। एंड द सेकेंड स्टेप इज मिक्स इंग्रेडिएंट्स। सो एड हनी एंड रॉ मिल्क इनटू द बाउल। ब्लेंड एवरीथिंग इनटू अ स्मूथ एंड थिक पेस्ट। सो द फर्स्टली क्लीन फेस अच्छे से कर लें और फिर उसके ऊपर इसे अप्लाई कर दें। तो आपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगा के रखना है और 10 टू 15 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएगा और फिर आपने इसे अच्छे से वॉश कर देना है। नॉर्मल पानी से भी आप वॉश कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप इसे मसाज करके भी रिमूव कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में कि ना सिर्फ आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, इंस्टेंटली मॉइस्चराइज करेगा, बल्कि जो डलनेस है स्किन पर वो भी ख़त्म कर देगा और टेक्सचर को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगा। सो माई लवली गर्लीज, यू विल सी एन इंस्टेंट ग्लो। ट्रस्ट मी, आप इसे ट्वाइस अ वीक यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी दिखे और इसी तरह से प्रीटी और ब्यूटीफुल वूमेन बने। सो डीवा बनने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने नॉलेज के साथ साथ स्किल के साथ साथ खुद की भी केयर करें, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जो कि डेली बेसिस पर अपनी फैमिली को टाइम देती हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम बनती हैं, ऑफिस के काम करती हैं, प्रोजेक्ट्स, ढेर सारा काम काज, किचन, कुकिंग, लेकिन इन सब के बीच में जो वो एक चीज़ स्किप कर देती हैं वो है टेक केयर ऑफ़ हर सेल्फ। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप खुद में ही खूबसूरत देखेंगी तभी आप दुनिया पर राज कर सकती हैं। अब मेरा इस बात से ये मतलब नहीं है कि अडीवा इट्सेल्फ अ गर्ल हु इज़ ब्यूटीफुल मॉडर्न, बट आप छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके खुद को अच्छा खासा इम्प्रूव कर सकती हैं। और स्किन केयर बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप अभी से अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखेंगी तो लेट 50s में जाकर तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो जाएगी। सो लास्ट में अपनी स्किन का ख्याल रखा करें और मुझे लास्ट में आप यूज़ करके बताइएगा कि आपको ये DIY मास्क कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे DIY मास्क मैं आपसे शेयर करते रहूं तो उसके लिए भी मुझे बताइएगा। सो रब्ते का नंबर एक बार फिर से शेयर कर देती हूं, 01157100971। ये है मेरा और आपका रब्ते का नंबर। सो इस नंबर के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने विचार। सो डियर लिसनर्स, अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आज के सेकंड मोटिवेशनल कोट की जानिब। सो ये कोट उन सभी लोगों के लिए है जिनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मायूसी चल रही है। सो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरह से नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं, डिमोटिवेशन से बाहर आ सकते हैं और ज़िंदगी को एक अच्छे से पॉजिटिव ट्रैक की तरफ ला सकते हैं।

listen to this very carefully. You don't need everyone to like you. Not everyone has a good taste. So our second quote is all about on peace, not seeking validation. आपको इस बात को समझने की ज़रूरत नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करे, क्योंकि हर किसी का टेस्ट अच्छा नहीं होता, हर किसी का मेयार डिफरेंट होता है। थोड़ी सी ह्यूमरस लेकिन कितनी सच्ची बात है ना, हम में से अक्सर लोग इस बीमारी का शिकार हैं कि हर कोई मुझे पसंद करे। अगर किसी ने हमारी तारीफ नहीं की तो हमारी बात को निगलेक्ट कर दिया गया। तो हम सभी में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं कि पूरा दिन अपना मूड ख़राब कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को टोटली इस जाविये के गिर्द घुमा रहे होते हैं कि हर कोई उनको वैलिडेट करे, लोग उनकी तारीफ़ करें, उनसे इम्प्रेस हों और उनकी हर चीज़ को सराहें। लेकिन सोचिए तो सही, क्या आप सबको खुश कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हट के सबसे अच्छी चीज़ और बेहतरीन लोगों में भी लोग ऐसे ऐसे फॉल्ट्स निकाल लेते हैं जो कि आपने कभी सोचे नहीं होते, क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि आपको खुश नहीं देख सकते, कुछ ऐसे लोग जो कि ऐसा समझते हैं कि उनसे बेहतर कोई भी नहीं, तो इन सिचुएशंस में वो दूसरे लोगों को तारीफ की निगाह से नहीं बल्कि तनकीद की निगाह से देखते हैं। सो जब आप दूसरों के अप्रूवल को ढूंढना छोड़ देंगे तभी आप खुद में असल आज़ादी हासिल कर सकेंगे। किसी की पसंद या नापसंद करने से आपकी वैल्यू ना तो कम होती है और ना ही ज़्यादा। आप खुद से मोहब्बत करें, अपने मेयार पर पहुँच जाएँ और दूसरों के ओपिनियन को खुद पर कभी भी बोझ मत बनने दें। सो बेसिकली ये था हमारा आज का सेकेंड कोट। हमारा आज का सेकंड कोट कुछ यूँ कहता है कि अगर आप में से भी हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों से वैलिडेशन की तलाश में रहते हैं या ऐसा समझते हैं कि अगर दूसरा उन्हें पसंद करेगा, दूसरा उनकी तारीफ करेगा तभी वो अच्छे दिखेंगे, तभी वो अच्छे बन सकेंगे। सो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, आप कभी भी किसी के लिए परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर आप किसी भी शख्स के लिए 10 में से 8 अच्छे काम करते हैं तब भी वो हमेशा उस एक काम को याद रखेगा जो आपने उसके लिए अच्छा नहीं किया होगा। बाज़ औक़ात हम दूसरों के गुड बुक्स में आने के लिए बहुत सारे ऐसे काम भी करते हैं जो कि हमारे खुद के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। सो आप सभी से मैं यही कहूँगी कि आप कभी भी कोई ऐसा काम मत किया करें जो आपके लिए मुश्किल हो। तो अगर आप खुद को अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकाल के किसी दूसरे की जस्ट वैलिडेशन हासिल करने के लिए वो काम करते हैं तो आप एक बहुत ही बड़े नाकाम इंसान हैं। सो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने नाकाम इंसान बनना है या आपने कामयाब इंसान। माई लवली डिवाज, आज के सेगमेंट से जो दो बातें हमें सीखने को मिली उनमें से पहली ये कि स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ और द सेकेंड इज वैल्यू योर सेल्फ। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों कोड बहुत अच्छे लगे होंगे और कहीं ना कहीं ये आप सभी की ज़िंदगी में पॉजिटिव असरात मरतब करेंगे। सो इसके हवाले से आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं या इस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है, 01157100971 इस नंबर पर जाके आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मालूम होगा ना कि आपका भी प्रस्पेक्टिव क्या है डिफरेंट चीज़ों को लेकर। सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रस्पेक्टिव और अपने प्रस्पेक्टिव दोनों को मिलाकर हम डीवर डायलॉग में शामिल करें। सो लिसनर्स, इस खूबसूरत सी

ओके तो लिसनर्स, इस वक्त वक्त हुआ है शो में एक अतिरिक्त कमर्शियल ब्रेक का, सो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार और हम स्टार्ट करेंगे आज का द स्पाइस किचन। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

तो लिसनर्स, वेलकम बैक एक बार फिर से तमाम तर सुनते हुए समातों को डीवा डायलॉग में खुशामदीद। और आप इस वक्त सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी आवाज़, यानी कि आरजे ज़ैनब फातिमा की आवाज़। तो मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है आपको मेरी खूबसूरत सी आवाज़ सुन के। सो लिसनर्स, ये तो एक मुख्तसर सा जोक था। सो अपार्ट फ्रॉम अ जोक, स्टार्ट करते हैं डीवा डायलॉग का अगला नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है मेरा आपका बल्कि सभी डीवास का फेवरेट सेगमेंट, क्योंकि आई नो हमारी डीवास को कुकिंग का है बेहद शौक और वो चाहते हैं कि डेली बेसिस पर उनके लिए लेकर आई जाएं अच्छी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज। सो इसीलिए आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलिशियस है। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आपके साथ शेयर करती हूँ आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सो अगर आप कोई भी काम कर रही हैं या फिर है आपका ध्यान इधर उधर, सो अपने ध्यान को इधर उधर से हटा दीजिए और अपना पूरा फोकस करिए इस रेसिपी पे। सो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को फॉलो करना होगा आप सभी को। सो द स्टेप नंबर 1 इज़ कि आप जल्दी से अपनी नोटबुक रेडी कर लीजिए या फिर आप 2 मिनट के लिए पॉज लें और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए, ताकि आप सभी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें और कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो जाए। सो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा स्टफ्ड चिकन। आई नो चिकन तो सभी को पसंद है, लेकिन स्टफ चिकन की बात ही अलग होती है, क्योंकि हम इसमें जो मसाले यूज़ करेंगे, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, वो इसको 100% मज़ीद यमी बना देगा। सो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट और फिर बारी बारी हम आगे बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब। सो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, यानी कि 2 बड़े पीसेस। याद रखिएगा कि इस रेसिपी के लिए आपने लेना है बोनलेस चिकन, क्योंकि इसी में ये परफेक्टली अच्छे से बन सकती है। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, साथ ही साथ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। वैसे अगर आप चाहें तो आप नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून, सो मैंने सोचा कि ये भी आपसे शेयर कर दिया जाए। अब नेक्स्ट बारी आती है ब्लैक पेपर की 1 टीस्पून। अच्छा, तो ये वो सभी इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे फॉर मैरिनेशन। अब ज़रा स्टफिंग की बात करते हैं। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्पिनच 1 कप, जिसे हम बिल्कुल अच्छे से बारीक कट करके रख लेंगे। साथ ही साथ इसमें शामिल होगा चीज़, आप चीज़ कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़, क्रीम चीज़ या फिर चैटर चीज़, लेकिन आपने यूज़ करना है 1 फुल कप एंड 1 हाफ कप। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है लहसुन, यानी कि गार्लिक 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक चॉप्ड कटा हुआ, और लास्टली कटी लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स 1.5 टीस्पून। सो देखा आप सभी ने कितने बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं। ये वो सब मसाले हैं जो कि नॉर्मली हमारे घरों में मौजूद होते हैं, और अगर बात की जाए चिकन की, वो भी हमारे घर में मौजूद होता है। सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि ईजीली अवेलेबल ना हो, सभी बहुत बेसिक सी आम सी चीज़ें हैं। सो अब बारी आती है इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं रेसिपी का, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक अदद खूबसूरत सा कलाम सुन लिया जाए, तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम। और अगेन, जब तक ये कलाम मैं सुन रही हूँ तो तब तक आप इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लें और अपने किचन में जाके ज़रा चेक कर लें कि क्या ये इंग्रेडिएंट्स आपके पास पड़े हुए हैं, और अगर कुछ भी आपसे मिस हो जाता है जस्ट इन केस, तो 01157100971 आप इस नंबर पे जाके मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो सिंपली मैं आपकी उस क्यूरी को कर दूंगी दूर। सो फिलहाल के लिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम।

रेसिपी का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं जिसमें हम बनाएंगे चिकन में पॉकेट्स। सबसे पहले हम चिकन ब्रेस्ट को अच्छे से धोकर टिश्यू पेपर की मदद से अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे। अब बारी आती है चिकन को फ्लैट रखें और तेज छुरी से साइड से कट लगाकर एक डीप पॉकेट बना लेने की। जब आप पॉकेट्स बना रहे हों आपने चीज़ का ख्याल रखना है कि छुरी दूसरी तरफ से बाहर ना निकले, वरना आपकी जितनी भी फिलिंग होगी वो भी बाहर आ जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि जस्ट एक साइड से छोटे छोटे पॉकेट्स बना लेने हैं। ये था फर्स्ट स्टेप। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा बाउल ले लेंगे जिसमें हम शामिल करेंगे ऑलिव ऑयल, गार्लिक पाउडर, पेपरिका पाउडर, नमक, काली मिर्च और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को कर लेंगे मिक्स। अब हमने ये करना है कि इस मसाले को चिकन के ऊपर, नीचे और पॉकेट के अंदर अच्छी तरह से लगाकर 15 से 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। इसी दौरान जब हम चिकन को थोड़ी देर छोड़ देंगे, हम तैयार कर लेंगे अपनी फिलिंग। एक अलग बाउल लेंगे, उसमें हम कटी हुई पालक, चीज, बारीक कटा हुआ लहसुन, कुटी लाल मिर्च, इन सभी को शामिल कर लेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारी फिलिंग हो जाएगी तैयार। जैसे ही हमारी फिलिंग हो जाएगी तैयार, हम आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप की जानिब। स्टेप नंबर 4 इज चिकन को स्टफ और लॉक करना। अब हम ये करेंगे कि चिकन की पॉकेट्स को खोलेंगे और तैयार की हुई फिलिंग इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे जैसे आप चिकन के अंदर फिलिंग को ऐड करते जाएंगे, वहीं वैसे ही आपने क्या करना है कि चिकन के पॉकेट्स को टूथपिक की मदद से अच्छी तरह से क्लोज कर देना है ताकि चीज बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अब बारी आती है स्टेप नंबर 5 की, जो कि है फाइनली कुकिंग। पैन हम ले लेंगे, एक नॉन स्टिक पैन, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को कर लेंगे अच्छे से गर्म। मीडियम हीट पर चिकन को दोनों तरफ से 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन दिखने लगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको चूल्हे पर नहीं ओवन में कुक करें, उसके लिए आपको 200 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट करना होगा ओवन को और चिकन को 20-30 मिनट्स के लिए बेक करना होगा। और टडा, फाइनली हमारा मज़ेदार सा स्टफ्ड चिकन हो गया तैयार। अगर आप चाहते हैं कि आप इस रेसिपी को मज़ीद डिलिशियस और टेम्पटिंग बनाएं, उसके लिए आप कोई से भी अच्छी सॉस के साथ इसको खा सकते हैं। और आप चाहें तो आप चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड सॉस यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपल केचप। वैसे मेरे पास एक बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी मशरूम सॉस की रेसिपी है, लेकिन चूँकि अभी वक्त बहुत कम है उसको मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँ, डू लेट मी नो 01157100971 इस नंबर के थ्रू। देखते हैं, अगर तो ज़्यादा वोट्स हुए तो कल के शो में हम शामिल करेंगे इस सॉस को। लिसनर्स, कैसी लगी आपको आज की मज़ेदार सी स्पाइस किचन की चटपटी सी रेसिपी? अगर आप मेरी जगह होते तो आप इसे पैन में बनाना पसंद करते या फिर ओवन में? वेल लिसनर्स, ये तो आप आज मुझे बनाकर ही बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा लगा। और मेरे रिकमेंडेशन पर लास्ट में इस रेसिपी को आज ही ट्राई करिएगा और साथ ही साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। जैसे कि आज फ्राइडे है, मोस्टली फ्राइडे के दिन सभी फैमिली एक साथ इकट्ठे बैठती है, मिल बैठ कर खाना खाती है। मैं तो यही कहूँगी कि आज ही इस अच्छी सी रेसिपी को ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ मिलकर इंजॉय करें, क्योंकि सिंपल से बेसिक से इंग्रेडिएंट है, मोस्टली तो आपके घर पर ही पड़े होंगे। हाँ, हो सकता है कोई एक अदा ना हो, वो आप सुपरमार्केट से आराम से परचेज कर सकते हैं।
سو اسی طرح کی مزید اچھی اچھی ریسیپیز کے لیے آپ مجھے بتاتے رہا کریں. سو میں پوری کوشش کروں گی کہ ٹیوا ڈائلاگ میں وہ سب ریسیپیز کو شامل کیا جائے جو کہ ہماری ٹیواز کو ہیں پسند. سو دیر اس طرح اسی کے ساتھ ہی ٹیوا ڈائلاگ کا یہ سفر ہوا جاتا ہے اختتام پذیر. آپ سب سے ملاقات کر کے گفتگو کر کے بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے, اور کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ گفتگو چلتی رہے, رستہ کبھی مت ختم ہو, لیکن چونکہ وقت کی ڈیمانڈ ہے, وقت تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے, سو فائنلی اب ہمیں شو کو کرنا پڑے گا وائنڈ اپ. سو لسنرز, جاتے جاتے اتنا ہی کہوں گی کہ اٹس دا ٹائم, اٹس دا مومنٹ. اگر ابھی تک آپ نے گمراہی میں اپنی زندگی بسر کی ہے, سو آج سے آپ ایک اچھا پازیٹیو بدلاؤ لا سکتے ہیں خود کے اندر. کس طرح سے؟ بس تھوڑی سی توجہ دے کر, تھوڑا سا اپنا یہ کنیکشن بلڈ کر کے. سو آج جیسا کہ ہے فرائیڈے, سو کوشش کریے گا کہ پورا دن آپ اچھے اچھے کام کریں, پازیٹیو رہیں, اور اگر کوئی آپ کے ساتھ نگیٹیوٹی کرتا ہے, مس بیہیو کر جاتا ہے, سو اس کو اگنور کریں, کیونکہ جتنا ہم اگنور کرتے ہیں اتنا ہی ہم زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. اور دا بیسٹ ریونج از نو ریونج. کہا جاتا ہے کہ دا بیسٹ آنسر از نو آنسر. جب آپ کسی کو نو آنسر والا آنسر دیتے ہیں تو سامنے والا نہ صرف آپ سے امپریس ہوتا ہے بلکہ کہیں نہ کہیں وہ ٹریگر بھی ہوتا ہے. سو جاتے جاتے ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتی چلتی ہوں, 01157100971 ہے میرا اور آپ کا رابطے کا نمبر. ساتھ ہی ساتھ بتاتی چلتی ہوں کہ www.radiofaza.com.uk ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے. اس ویب سائٹ کے تھرو آپ ریڈیو فضا 97.1 FM سے جڑے ہر طرح کے شو کو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, اور ہماری اس فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہماری اپلیکیشن کو بھی ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں. سو لسنرز, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اپنے سے جڑے ان سبھی لوگوں کا خیال رکھیے گا جن کی زندگی آپ کی زندگی سے منسلک ہے. اور جاتے جاتے مجھے اپنے ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ کو دیں اجازت, کیونکہ ڈیوا ڈائیلاگ کا یہ سفر ہوا جاتا ہے ختم. اللہ حافظ. جاتے جاتے خوبصورت سا کلام آپ سبھی کے لیے پلے کرتی چلتی ہوں, تو آپ سنتے سنتے اپنے اس خوبصورت سے دن کو مزید خوبصورت بنائیں. اللہ حافظ.

सबसे पहले ट्रैक से ही किया जाए, मतलब कलाम से किया जाए, और फिर बैकग्राउंड म्यूजिक को जो है बीजीएम को वो कलाम रखा जाए, और साथ फिर आके आपके साथ गपशप लगाई जाए। अभी टाइम भी जो है वो कुछ इस तरह का है कि कलाम ही ज़्यादा प्ले किए जाएँ तो अच्छा है, आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाऊँगी। सो दुआ करेंगी अपने लिए, दूसरों के लिए। जुमे का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन जो है हम प्रॉपर अपने रब को टाइम दे सकते हैं। बाकी दिनों में तो उस तरह से चले रूटीन नहीं होती, कामकाज में इंसान बिजी होता है, लेकिन फ्राइडे का दिन इसीलिए रखा जाता है कि आप प्रॉपर जो है रब की तरफ माइल हों, प्रॉपर रब की तरफ जाएं। और वो जो है ना वो ये नहीं कहता कि अभी आने का भी क्या फ़ायदा था, वो आने वालों को बिस्मिल्लाह करता है और उनको थाम लेता है। एक उसी का दर है जहाँ से बार बार मांगते हुए शर्म नहीं आती, एक वही दर है जहाँ से शर्मिंदा करके निकाला नहीं जाता, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी की ढेरों परेशानियाँ रख सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी की वो बातें बता सकते हैं उसे जो कोई और नहीं समझ सकता, जो कोई और नहीं सुन सकता।

वो कहते हैं ना कि इंसान ज़मीन पे सजदा करता है उस अर्शों पे रहने वाले को, किल को, और ज़मीन पे सजदा करने से जो है ना वो सजदा ही जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। सजदा शुक्र का हो या किसी भी चीज़ का हो, शुक्र का सजदा करना चाहिए। और सजदे के बाद जो है ना अल्लाह ताला ने शुक्र करें कि रब की ज़ात ने आपको सजदा करने का जो है वो हुक्म दिया हुआ है, सजदे करने की मोहलत रखी हुई है, जिसके बाद आप अपने दुख दर्द जिसको सुनाते हैं जाके सजदे की हालत में, और वो अगर सजदे ना होते ना तो इंसानों के दिल फट जाते।

तो बस अल्लाह के नाम से कीजिए। सो इसी का मतलब यही है कि आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह के जो है ना मामलात लेकर चलने हो तो आप अपने रब से जो है वो कॉन्टेक्ट करें, अपने रब से जो है बात करें। क्योंकि वही है जो आपकी बात सुनेगा। वो कहता है कि तुम हक की बात करने से मत डरो, क्योंकि ना कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना कोई तुम्हारा रिज्क कम कर सकता है, क्योंकि वो तो उनको भी देता है जो उससे मांगते नहीं है, जो उसको याद नहीं करते। सो इस चीज़ को देखें कि अल्लाह ताला जो है ना वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, वो बस आज़माते हैं और सब्र करने वालों का साथ देते हैं। बेशक वो कहता है कि सब्र करने वालों के साथ बाकियों के पास माल और दौलत होगा, लेकिन सब्र करने वालों के साथ रब की ज़ात खुद होगी।

जब हम उससे दूर जाकर किसी और से उम्मीद वाबस्ता कर लेते हैं ना, तो वो ये चीज़ देखता है और देख के मुस्कुराता है और कहता है कि कोई नहीं, एक टाइम आएगा कि वो मेरे पास लौट कर आएगा। और फिर उसके बाद वो जब दुनिया वाले उसको छोड़ के चले जाते हैं ना, जिनसे उसने उम्मीदें लगाई होती हैं, तो वो फिर बताता है कि बता बंदे, अब मेरे सिवा तेरा कौन है। जब अल्लाह ताला किसी को ज़्यादा पसंद कर लेते हैं ना, तो वो फिर उसका दिल दुनिया वालों से उदास कर देते हैं, दुनिया वालों से उसका मामला जो है ना वो तोड़ देते हैं, ताकि वो रब के करीब जाए, ताकि वो रब को हर मामले में आगे रखे, क्योंकि अल्लाह ताला को वो इंसान पसंद आ जाता है। और हम लोग कहते हैं कि सारी मुश्किलें हमारे लिए ही क्यों हैं, जो दरवाज़े उसने आपके लिए बंद किए हैं उन्हें कोई खोल नहीं सकता, और जो दरवाज़े उसने आपके लिए खोले हैं उन्हें कोई और बंद नहीं कर सकता। यकीन जो है ना, यकीन उस पे रखे, क्योंकि वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता। कुछ रहम ओ अल्लाह, अल्लाह। उसकी अदालत में सिर्फ एक ही नहीं सुनी जाती, बल्कि दोनों तरफ की सुनी जाती है, और फिर उसके बाद फैसला किया जाता है, और फैसला भी कुछ इस तरह से होता है कि दोनों तरफ खुशी मिलती है। इसीलिए तो उसकी शान निराली है।

वो बड़ा रहीम है, कर्म करने वाला है, रहम करने वाला है, वो आपकी क्यों नहीं सुनेगा, बल्कि वो हमारी ही तो सुनेगा। हमें ये सोचना चाहिए। वो कौन कहता है और चीज़ें हो जाती हैं, वो कौन कहता है तो चीज़ें हो जाती हैं, गुमान से आगे बयान से बाहर। कायनात में कोई भी इतनी शिद्दत से आपका इंतज़ार नहीं करता जितनी शिद्दत से रब आपका इंतज़ार करता है। रब अपने बंदे का इंतज़ार करता है, उसकी तौबा का इंतज़ार करता है, और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद नौजवान की तौबा है। सवाल इसी के साथ साथ प्रोग्राम का आगाज़ आपके साथ रहा ठीक ठाक। अभी प्रोग्राम में जो एक छोटी सी फरमाइश को पूरा करेंगे, फिर इसके उस पार आपसे मेरी मुलाकात होगी। साथ दीजिएगा, साथ होने के एहसास से लेकर प्रोग्राम में एक और छोटी सी आवाज़ को शामिल करते हैं, एक छोटी सी फरमाइश को। सो इसके उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फजल 97.1 FM एंड ऐप। साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। वो उसी के साथ साथ अभी मेरे और आपके दरमियान वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। प्रोग्राम में शामिल की थी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की खूबसूरत थी आवाज़। सो अभी जो है वो प्रोग्राम मेरे पास और भी फरमाइश मौजूद है, बट अभी जो है ना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम होने वाला है कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर आपकी फरमाइशों को मैं प्रोग्राम में शामिल कर सकती हूँ। जिन्हें लोगों ने आज अभी 97.1 FM को ट्यून किया है, बेशुक्रिया आप तमाम नई समातों का। और इसी के साथ साथ अभी आपने साथ देना है और साथ होने का एहसास दिलाना है ठीक ठीक 2 बजे तक। प्रोग्राम में हाल होने लगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून 97.1 FM एंड ऐप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज आप सुन रहे हैं सरोज आज की जरूरी के साथ साथ। अभी वक्त हुआ जाता है ख़त्म, अब आपको मुझे देनी होगी इजाज़त। मिलेंगे वीकेंड के बाद, वीकेंड के बाद जब आपसे मुलाकात रहेगी तो उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे से ही रहेगा। कल तक के लिए नहीं, परसों तक के लिए नहीं, बल्कि मंडे तक के लिए अपना अपने प्यारों का, बल्कि संडे तक के लिए अपने अपने प्यारों का, इर्द गिर्द का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। सवाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगेबान।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening to Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
11: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
10: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
12: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसें चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB. अगर तुम

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972 ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें। आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
6: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
6: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन।
7: You are listening 97.1 FM.

कोई से तुम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें रातों ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सब

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
7: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए.
8: वे मैं तेनू कितना प्यार कर दिया.
7: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन.
8: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो.
7: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसीब हेज एंड मुकी. अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL. अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए. जी, एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम. बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999. एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन. हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस. बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk.
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA, Students Learning and Skills Academy.
10: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का.
10: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स.
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट.
10: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह.
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है.
10: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS.
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट.
10: टेस्ट भी, वाइब भी. हेलो, कहाँ पर हैं आप?
11: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
10: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
11: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
10: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
11: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
12: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
13: You are listening 97.1 FM.

अस्सलाम वालेकुम सर, सत श्री अकाल और प्यार भरा सलाम है तुम्हारे सुनने वालों के नाम। मैं हूँ आरजी मोहम्मद और आप सुन रहे हैं फजल 97.1 एफएम एंड ऐप। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जिस हाल में भी हैं, जहाँ भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे।

मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आवाज़ें तो बहुत सी हैं पर आवाज़ वो जो अपनापन दे, और उम्मीद है कि मेरी आवाज़ भी आपको ऐसी ही लगती होगी, और शो के शुरू ही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वक्त, कुछ लोग इस वक्त शिफ्ट क्लोज करके घर की तरफ जा रहे होंगे, कुछ लोग ड्राइव कर रहे होंगे, या जो इस वक्त शिफ्ट को जा रहे हैं, उनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा।

आज होंगी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे गाने होंगे और अच्छी अच्छी मुलाकातें होंगी, आपसे बातें होंगी, आपके पैगाम सुने जाएंगे और आपके पैगाम होते हैं एयर किए जाएंगे और आपको नसीहतें भी किया जाएंगी और आपसे नसीहतें लिए भी जाएंगी। और मैं इसलिए कहता हूँ कि रेडियो सिर्फ सुनने का नाम सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और महसूस करने का मतलब ये है कि आप हम एक दूसरे को देख नहीं सकते मगर हमारी आवाज़ जो है वो आपको आपके एक दिल में जादू जगाती है कि आपकी उम्मीद जगाती है। जैसे कि आपका दिन अगर बोरिंग गुजरा हो या हो सकता है कि हमारी कोई ऐसी बात आपको अच्छी लग जाए या ऐसी बात जो आप सुनना चाहें कि आपको लगे कि ये बात बहुत अच्छी है तो वो आपके दिल को भा जाए, तो उम्मीद है कि हमारी बात भी ऐसी ही होगी। और आने वाले कुछ देर बाद हम ऐसे अपने कहेंगे कि आपको आपका टॉपिक कौन सा होगा आज का। खैर, अगर आप मुझे वॉक रोड पर वॉक करते हुए सुन रहे हैं या पार्क में जॉगिंग करते हुए सुन रहे हैं, मैं आप सबको अपने शो में ड्राइव जोन में वेलकम कहता हूं। डेली कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी करना एक सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और चाहे आप किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, आपको डेली कुछ ना कुछ हेल्दी एक्टिविटी करना लाजमी होती है। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और हम डेली की रूटीन में जो वर्क करते हैं, जो डेली हम इतना मसरूफ़ होते हैं कि अपने आप को कुछ वक्त नहीं दे पाते, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी करते होंगे। अगर कोई जो बंदे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो नहीं करते तो कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी ज़रूर किया करें। जो लोग इस वक्त मुझे ड्राइविंग करते हुए सुन रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि हैव अ सेफ ड्राइव। और अगर आप इस वक्त टैक्सी चला रहे हैं या कैब चला रहे हैं तो आपको कहना चाहूँगा कि आपके साथ और भी जाने मौजूद हैं, और तेज़ जल्दी पहुँचने से बेहतर है आहिस्ता चलाया जाए और ध्यान से चलाया जाए और इत्मीनान से चलाया जाए, क्योंकि आपके साथ और भी जाने मौजूद होती हैं और आप पर जिम्मेदारी फिर ज़्यादा हो जाती है। और सबसे बढ़कर आपकी अपनी जान कीमती होती है, और आपको पता है कि आपके कोई भी घर में इंतज़ार कर रहा होता है। जो मेरी तरह परदेसी हैं उनका कोई कॉल के लिए इंतज़ार कर रहा होता है कि कब वो घर आएंगे तो हमें कॉल करेंगे। और इसके अलावा अगर तो आप अकेले इधर फैमिली के साथ रहते हैं तो आपका कोई ना कोई घर पर इंतज़ार कर रहा होता है। तो हैव अ सेफ ड्राइव। आप चलते हैं उन लोगों की तरफ जो इस वक्त मुझे ऑफिस में जॉब करते हुए सुन रहे हैं, ड्यूरिंग शिफ्ट सुन रहे हैं, और उनको कहना चाहूँगा कि अगर आपके कंपनी के रूल्स में शामिल नहीं है कि आप ड्यूरिंग वर्क कोई भी चीज़ करें इस तरह की, या कोई भी फ़ोन यूज़ करें या कोई एक्टिविटी करें, तो कोशिश कीजिए इस चीज़ को अवॉइड किया जाए, और अगर आपकी कंपनी इजाज़त देती है तो कैरी ऑन भाई, मेरा की जाना है। अगर आपकी कंपनी इस वक्त इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती तो कोशिश कीजिए कि अपने ब्रेक टाइम में या जब आप घर जा रहे हो तो उस वक्त सुन लिया करें, क्योंकि हमारी ये बातों के से ज़्यादा आपके घर के का पेट पालना बेहतर है। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, इस बात को नेगेटिव में नहीं लेना। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये मैं बात सिर्फ जस्ट आपके नॉलेज के लिए कह रहा हूँ कि ये एक हर एक कंपनीज़ के रूल्स होते हैं, और हमें चाहिए कि हम अपनी कंपनीज़ के रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कोई भी काम करें। और मैं घर के से याद आया कि मैंने जो लोग इस वक्त मुझे घर में सुन रहे हैं एक कप कॉफ़ी के साथ टेरेस पे खड़े होके, और इसके अलावा जो खवातीन मुझे सुन रही हैं डिनर बनाते हुए, काम करते हुए या फ्री टाइम में, और इसके अलावा जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं माँ अपनी मामा पापा के साथ, तो उनको भी मैं अपने शो में वेलकम कहना चाहूँगा।
खैर वेलकम तो सबको कर लिया और बातें भी बहुत सी हो गई और साथ साथ एंटरटेनमेंट होना लाजमी है। तो एक प्यारा सा मेशअप आपके लिए रेडी किया हुआ है और मेशअप भी पंजाबी में है और जो लोग इस वक्त पंजाबी समझते हैं उनके लिए स्पेशली डेडिकेशन है। सोनम बाजवा, सुभा और एपी ढिल्लू और इन सब का मेशअप है और सुनिए, इंजॉय करिए और मिलते हैं कुछ देर के बाद।

साथ आज का हमेशा भी इसी तरह का है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो भी मौजू है वो एक हिला के रख देगा। मैं कहता हूँ कि आपकी ऐसी यादें ताज़ा होंगी जो आपने कभी सोचा ना था कि हाँ यार ये बात भी तो है थी, ये मेरी एक बात थी जो मुझे आप रिमेंबर हुई है, और आपने अपने होने का एहसास भी मुझे देना है साथ साथ। साथ होने का एहसास जो तो पुराने लिसनर रेगुलर सुन रहे हैं उनको तो पता है, नए आने वाले को बताता चलूं कि हम साथ देने का तरीका ये है कि आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज या कोई भी पैगाम जो आप हमें कहना चाहें, या अपनी कोई भी याद ऐसी जो आप पहली नौकरी के दौरान हुई हो वो हमें बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 01157100971। इसके अलावा आप हमें फ़ज़ा 97.1 FM की एप्लीकेशन से भी हमें सुन सकते हैं, जहां कहीं भी सिग्नल्स की प्रॉब्लम है या जहां कहां कहीं भी कोई ऐसा मसला आप पेश आता है जहां आपको फ़ज़ा के सिग्नल नहीं पहुंचते, तो फ़ज़ा रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM के नाम से एक एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आप हमें सुन सकते हैं। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, और इसके अलावा अगर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग सुनना चाहते हैं तो आप हमें radiofaza.co.uk वहाँ पे जाके भी सुन सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको आपका ये जो टाइम है, कीमती टाइम जो आपने हमें दिया है, वो इसको एक हसीन लम्हे में तब्दील करूं और आपके चेहरे पर खुशियां लाऊं, और इसके अलावा मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ऐसा महसूस भी ना होने दूं कि ये बंदा बातें ही कर रहा है, बस काम कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, या आपको इंटरटेनमेंट भी साथ साथ करवाते रहेंगे। और अगर आपको ये सॉन्ग्स जो कोई आपकी डिमांड है या आपका कोई पैगाम है तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, या किसी को कोई बर्थडे विश करनी हो या एनिवर्सरी की विश करनी हो या कोई भी ऐसा पैगाम जो आप कह को समझते हैं कि हम हमारे तक पहुँचें, तो आपका पैगाम जो ही हमारे पास पहुँचेगा तो हम आप सुनती हुई समातों के नाम कर देंगे।

0: ਜੋਰ ਰੱਬ ਹੱਥ ਡੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਬਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਲੀ ਗੱਡ ਖਾਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਪਾਏ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਕਰ ਕਰ ਕਰ।
1: बात करते हैं आज के मौजू की, तो मौजू नए आने वाले लिसनर को बताते चलूं कोई मौजू है पहली नौकरी और पहला दिन कैसा था। अच्छा, पहला दिन से मुराद ये है कि आप कहीं भी जाएं या कोई भी नई नौकरी करने के लिए जाएं या कहीं भी ऐसी जगह जाएं जो आपके लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो, इवन कि इंटरव्यू के टाइम पर भी जब आप जाएँ तो आपका जो भी एक्सपीरियंस हुआ होता है वो एक अलग ही वाइब होती है उसकी। और कई बार कोई ऐसे ब्लंडर भी हो जाते हैं जो बाद में याद आते हैं कि यार ये काम भी मुझसे हुआ था। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो बंदा ऐसे इंसान मिल जाते हैं कि जो आपको हौसला देते हैं, जो आपको इस चीज़ पे ये महसूस होने नहीं देते कि आप अकेले हैं, ये नहीं महसूस होने देते कि आप इस कंपनीज़ में या इस अदारे में एक न्यू की तरह आए हैं,

जरा याद कीजिए अपनी पहली नौकरी, वो सुबह कैसी थी, कि आपने क्या आपने रात को भी नींद पूरी की थी? अच्छा, नींद से याद आया कि मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ होता है या नहीं होता, ये आपने मुझे बताना है कि जिस दिन मैंने नेक्स्ट डे मैंने फर्स्ट डे या इवन इंटरव्यू के लिए भी जाना होता है, तो मुझे उससे लास्ट नाइट को नींद नहीं आती। एक्साइटमेंट, टेंशन रहती है कि सुबह पता नहीं क्या होगा, किस तरह के लोग होंगे, कौन कौन होगा। जाहिर सी बात है, जब जहाँ भी इंटरव्यू देने जाएं तो एक बंदा तो मौजूद नहीं होता, वहाँ पे मुख्तलिफ बंदे मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ क्वालिफिकेशन के बंदे मौजूद होते हैं, हो सकता है आपसे बेहतर बंदे मौजूद हो। इस तरह के सवाल दिल में चल रहे होते हैं, दिमाग में चल रहे होते हैं, और आप बंदा इसी कश्मकश में रात गुजारता है। इवन कि जब सुबह तैयार होता है तो अपने बार बार अपने कपड़ों को देखता है कि कपड़ों को कोई मसला ना हो, अपनी ड्रेसिंग को देखता है, अपनी चीज़ें बार बार देख चेक करता है कि ये चीज़ें मेरी पूरी हैं, ये चीज़ जो उन्होंने रिक्वायर्ड की है वो पूरी है। आईने के सामने खड़े को खुद को देखता है और दिन में भी ये दुआ करता है कि आज का दिन अच्छा गुजरे। दोस्तों, पहली नौकरी सिर्फ तनख्वाह कमाने का नाम नहीं होती, ये इंसान की ज़िंदगी का एक ऐसा नायाब पल होता है जो दुनिया के किसी भी कोने में जो भी इंसान ये पहली नौकरी के लिए जाता है तो वो इस तासुरात से, इन मामलात से लाजम गुजरता है। और आपने भी मुझे बताना है कि अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो वाकई ये बात है या सिर्फ ये चीज़ मेरे साथ होती है।

हमें से बहुत से दोस्त ऐसे भी होंगे जो पहली नौकरी, जिनकी पहली नौकरी सुपरमार्केट में लगी होगी, रेस्टोरेंट में लगी होगी, फैक्ट्री में लगी होगी, या ऐसे ऑफिसेज में लगी होगी, या इवन के कुछ तो यूके आके टैक्सी या डिलीवरी राइडर बनते हैं, कुछ वेयर हाउस में काम करते हैं, और आज शायद वही लोग अपनी टीम लीड कर रहे हैं जो इस वक्त अपने हार्ड वर्किंग के ज़रिए और अपने कॉन्स्टेंसी के ज़रिए और अपने कॉन्फिडेंस के ज़रिए एक ही नौकरी में रहे, और उन्होंने डिसहार्ड नहीं हुए कि मेरा पहला दिन अच्छा नहीं गुजरा, मेरा मुझे काम नहीं आता, मुझे ये नहीं है, ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी। आपने जब भी कहीं भी पहला नौकरी करने जाना है और पहले इंटरव्यू देने जाना है, तो आपने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, कोशिश करनी है कि ऐसा महसूस ना होने दिया जाए कि आप कन्फ्यूज़ हैं या आपको कोई काम आता नहीं है। जो भी काम को आपके सीनियर्स करें या आपके जो ट्रेनर कहें, आपने कह देना है कि हाँ आता है मुझे, चाहे वो आता ना हो। और एक बड़ी कामयाबी के पीछे, मैं कहता हूँ कि एक बड़ी कामयाबी के पीछे एक छोटा सा दिन ज़रूर होता है जो पहला दिन होता है, और वो सच बताऊँ कि पहला दिन कभी नहीं भूलता। उस दिन की ऐसी यादें होती हैं जो इंसान को कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चला जाए, वो पहला दिन और पहली तनख्वाह, पहली वो दोस्त, वो पहले सलाम, वो पहला हौसला, वो ज़रूर याद रहता है।

अच्छा, मुझे याद है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पहले दिन मुझे जॉब पे गए और उनको इवन कि ये भी नहीं था पता कि मशीन का बटन ढूंढते हैं कि मशीन कहाँ है, ये जिस तरह ये वेयर हाउस या फैक्ट्रीज वगैरह में जो लोग काम करते हैं उनसे एक्सपीरियंस किया है कि मैं वो कहते हैं कि हमें पहले दिन बॉस का नाम नहीं याद होता, उनका एक्सेंट नहीं समझ आता। इवन कि मुझे, मैं अपना बताऊं कि मुझे एक्सेंट नहीं समझ आया बॉस का कि वो क्या कह रहे हैं। वहाँ मैं बस सिर हिला रहा था, यस यस ओके बॉस, ओके बॉस, यस बॉस, ओके बॉस। और बाद में पता चला कि वो बात कुछ और थी और हम किसी और सेंस में समझ के यस यस कर रहे थे। और आज इन्हीं बातों में हंसी आती है और आज, लेकिन इस वक्त दिल को की धड़कनें वाकई तेज़ रहती हैं और क्या है, बंदा सोचता है कि वो दिन, वो यादें, वो बातें, क्या बातें थी, वो ऐसे एहसास, वो पहले दोस्त का मिलना, वो मैं इनको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि वो ऐसे तासरात होते हैं बंदे के कि बंदा सोचता है कि क्या ही सोचता है। मैं कहता हूँ कि आप भी बताना है, आपने भी बताना है कि ऐसा क्या आपकी एक्सपीरियंस हुआ या ऐसे क्या आपने भी ऐसा काम किया कि आपको बॉस का नाम ना याद रहा हो या बॉस की कोई ऐसी नसीहत जो आज तक आपने उसको संभाला है और उसने अपनाया है तो आपको वो कहें कि हाँ ये जो नसीहत थी बॉस की वो मैंने अपनाई है और मुझे लगता है कि मेरी कामयाबी के पीछे वन ऑफ देम। हर बातें तो बहुत सी हो गई हैं, अब कंटिन्यू करते हैं इस सॉन्ग्स को और आफ्टर द फ्यू मिनट्स वी विल बी बैक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: Get ready to move.
7: It's all about the beat.
8: Wow, FM.
9: Only Tune Super Hit Channel.
10: Fizz on 97.1 FM.

वंस अगेन वेलकम बैक। और एक प्यारे से ब्रेक के बाद उम्मीद है कि आप हैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सॉन्ग्स भी इंजॉय किया होगा और कमर्शियल में सब्र व तहम्मुल से काम लिया होगा। और मैं वेलकम करता हूं उन सब को जो इस वक्त मेरे साथ अभी अभी शामिल हुए हैं। और हम बात कर रहे थे पहला दिन जो नौकरी का होता है या इंटरव्यू का, उस हवाले से। और आज का टॉपिक भी यही कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा वो दिन जो सैलरी का होता है। अच्छा, पहला दिन तो होता है जो वो क्या कहते हैं उसे, इंटरव्यू का। हाँ, अपनी बातें बोलने लग पड़ा हूँ। अच्छा, नौकरी के पहले दिन के अलावा भी एक दिन होता है, वो दिन होता है पहली तनख्वाह का। ये वो दिन होता है कि जब इंसान के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस और एक खुशी होती है कि आज मैं उस काबिल हो गया हूँ कि मैं अपने पैसों से कोई चीज़ खरीद सकता हूँ। और पहली नौकरी की तरह एक वो भी दिन है जो पहली तनख्वाह का दिन है। ज़रा याद कीजिए कि जो पहली बार आपने कहीं मोबाइल में सैलरी का मैसेज आया था। अच्छा, सैलरी का मैसेज भी एक अलग ही वाइब होती है उसकी। जब आपके फ़ोन में सैलरी का मैसेज आता है तो आप देखते हैं कि सैलरी क्रेडिट हुई है। और वो फर्स्ट सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सैलरी की बात के बाद जब आप अपनी पे स्लिप देखते हैं तो आपके दिल में अलग सी ख्वाहिश पैदा होने लग पड़ती है। कि वो ख्वाहिश इस तरह होती है कि मैंने अपने लिए शॉपिंग करनी है, कुछ के लिए ख्वाहिश होती है कि मैंने अपनी माँ बाप को कोई चीज़ लेके देनी है, बहन भाइयों को आइसक्रीम खिलाने लेके जाना है। या आप इस काबिल हो जाते हैं कि किसी से मांगना नहीं पड़ता आपको, और आप में ये अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है। और ऐसी एक अलग सी, मैं कहता हूँ कि वाइब हो जाती है, कि खुशी चेहरे पर इतनी होती है कि बंदा कहता है कि आज तो बन गई हमारी।

और यही एक कामयाबी का राज है। और मैं कहता हूँ कि उन लोगों के लिए कामयाब बनो कि जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं कहता हूँ कि आपकी मेहनत ही आपको कामयाब बनाती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कामयाबी, इतनी मेहनत करो कि कामयाबी आपका ना मुंह बोल सबूत दे कि हाँ ये बंदा मेहनती है और इसने मेहनत करके, आपने बलबोते पे मेहनत करके ये काम किया है। और किसी के बलबोते पे नहीं रहना। और कुछ बंदों के जहन में होता है कि फलां मेरा फलां काम करता है और मैं ये कर लूँगा तो वो कर लूँगा, इस तरह नहीं होता। आपने मेहनत करनी है और कंटिन्यूसली मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत ही इंसान के लिए वो चीज़ है जो आपको कामयाब बनाती है। अगर आप एक चीज़ की ख्वाहिश करते हैं और आप मेहनत नहीं करते तो आपको कभी हासिल नहीं होती। जस्ट लाइक अ स्टूडेंट कि अगर वो मेहनत नहीं करता तो वो इम्तहान में पास नहीं होता। तो बात हो रही थी सैलरी की, तो सैलरी मैं कहता हूँ कि आपने भी बताना है कि सैलरी आपने अपनी किधर उड़ाई थी फर्स्ट सैलरी। मैं भी आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो आपने भी बताना है कि आपने अपनी सैलरी कहाँ पे उड़ाई और किसको दी, या क्या क्या लिया घर वालों के लिए, अपने ऊपर सारा कुछ खर्च किया, या अम्मी के लिए कोई चीज़ ली, अब्बू के लिए कोई चीज़ ली, बहन भाइयों को आइसक्रीम लेके दी, दोस्तों यारों को कोई पार्टी शार्टी दी, या अपने वर्क फेलोज़ को पार्टी दी, ये आपने ज़रूर बताना है। बताने का तरीका वही पुराना। जो इस वक्त नए मेरे साथ शामिल हुए हैं उनको बताते चलूँ कि आपने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और अपना राय ज़रूर भेजनी है, क्योंकि आपकी राय ही हमारी खुशियों का पैगाम लाती है और हमारे चेहरे पर खुशी लाती है। और आपके प्यार प्यार मैसेज जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे चेहरे पर भी खुशी आती है और हमारा दिल खुश होता है कि वाकई हमारे साथ कोई है, क्योंकि हम आप एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक आवाज़ ही है जो हमारा और आपका के दरमियान एक रिश्ता कायम करती है। और मेरे नज़र में एक आरजे के लिए खुशी की बात यही है कि आप अपने होने का एहसास देते हैं। जो हर बात हो रही थी फ़ोन नंबर की, मैसेज की आप कर सकते हैं 01157100971। अपना प्यारा सा पैगाम और अपने शहर का नाम, अपना नाम लिख के ज़रूर भेजिएगा ताकि आपका ऑन एयर करते हुए आपका प्यारा सा नाम लिया जाए और आपके शहर का नाम भी लिया जाए। और अगर आपने किसी के नाम पे कोई पैगाम देना है तो उसका भी नाम लिख दीजिएगा। हमारा जो भी स्क्रीन पे जो भी नाम जिसका भी आएगा, जो भी पैगाम आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर उसको शामिल करें। और जिन लोगों के इस वक्त मैसेजेस शामिल नहीं होते उनसे माजरत करूँगा, क्योंकि स्क्रीन टाइम भी हमने साथ मैनेज करना होता है, तो टाइम इस तरह का होता है कि हम सबको शामिल नहीं कर पाते। कुछ को लकीएस्ट पर्सन्स मैं कहना चाहूँगा, लकीएस्ट पर्सन्स कुछ होते हैं जिनके और जिनकी कुछ ऐसी बातें होती हैं, रैंडम बातें होती हैं, और जो अपने होने का एहसास देते हैं उनको हम बातें करते हैं, उनसे देखते हैं, उनके मैसेजेस पढ़ते हैं, उनको के पैगाम देते हैं, उनकी जो विशेज़ होती हैं हम कोशिश करते हैं कि वो पूरा करें। इसके अलावा आपकी भी कोई विश हो तो ज़रूर बताइएगा। कोई गाना लगवाना है, किसी के नाम कोई पैगाम देना है, कोई भी किसी को बर्थडे विश करनी है, वेडिंग एनिवर्सरी है तो उसकी विश करनी है, या कोई भी पैगाम बुरा ना हो अच्छा ही हो।

अच्छा ड्राइव टाइम है तो जोन प्रोग्राम है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ड्राइवर हजरात को भी मुखातब करते हुए कहना चाहूँगा कि आपने पहली अर्निंग कहाँ स्पेंड की और उसकी भी वाइब आपने बतानी है, आपने ज़रूर बताना। और आपके साथ जो भी पैसेंजर बैठा हुआ है अगर वो भी मेरी ज़बान जानता है या हमारी ज़बान उसको समझ आ रही है तो उसको भी मैं कहना चाहूँगा कि आपने भी बताना है कि ऐसी कौन सी आपकी फर्स्ट ट्रिप थी जो, या फर्स्ट सैलरी आपकी भी थी जो आपने सोचा कि आपके जहन में आए कि उसकी ऐसी कोई याद, कोई ऐसा शख्स जिसका आप तारीफ़ करना चाहें, चलो झूठी सही, झूठी तो नहीं होती, बंदे को वही याद रहते हैं जिनके साथ बंदे ने अच्छा वक्त गुजारा और अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं उन बंदों को। हर कुछ बुरे लोग भी होते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे अच्छा और बुरा ज़रूर आता है, और बुरे लोग भी कुछ इंसान के साथ होते हैं, कुछ ऐसे या ऐसे वाक़ियात बुरे हो जाते हैं जो इंसान को बज़ाहिर उस वक्त तो नहीं याद आते, जब बाद में कभी कहीं कहीं ऐसा वाक़या नज़र आता है कि वो भी इंसान कहता है कि हाँ मेरे साथ भी ये वाक़या हुआ था और ये बहुत गलत हुआ था, मैं कहता हूँ ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। और मेरी नज़र में पहली तनहा की कोई इतनी कीमत नहीं होती, कीमत होती है उस एहसास की जो बंदे के दिल में अपनायत को जगाता है, और अपनायत ही ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को इंसान बनाती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि

हर बात होते होते लंबी हो जाती है। मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं भी अभी नहीं से जॉब करने जा रहे हैं, जो इस वक्त ऐसे लिसनर हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आज का जो मौजू है वो है आपकी पहली नौकरी का दिन, और या पहली सैलरी का दिन कैसा था, या ऐसा कोई वाकया जो आपके अभी भी याद हो, ऐसे कोई बंदा जो आपको अभी भी याद हो। तो बात हो रही थी कि मेरे नज़र में खुद पर भरोसा रखो, मेहनत को अपना जेवर बना लो, और दुनिया खुद तुम्हारे साथ साथ रास्ते का इंतज़ार करेगी। इट्स मीन कि अगर आप मेहनत करते हैं ना, और मुखलस रह के मेहनत करते हैं अपने काम से, तो बंदे आपको भी याद करते हैं। ये नहीं है कि आप किसी अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, आपको भी बंदे अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। अगर बेशक आप एक कंपनी में न्यू है, खा उधर कितना भी अरसा आपने जॉब की हो, तो मेरे नज़र में वो आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। और कोशिश किया करें कि आप अपनी कंपनीज़ में अच्छे लफ्ज़ों में ही याद किया जाए, ऐसे काम ना किया करें। इसलिए मैं अक्सर जब भी अपने शो में आता हूँ तो ओपनिंग में ज़रूर मैं ये कहता हूँ कि आपने कंपनीज़ के रूल्स और रेगुलेशंस को ज़रूर फॉलो किया करें, क्योंकि यही एक ज़रिया है आपके पेट पर अपने आपका और अपने घर वालों का पेट पालने का। तो कोशिश किया करें कि अपनी कंपनीज़ के रूल्स को ज़रूर फॉलो किया करें। और बात मैं तो अपनी तरफ से थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव ही कर रहा हूँ, हो सकता है कि इसके कुछ की नज़र में ये बात फजूल लगे। मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जो आपके एक उनके जहन में ये चीज़ होती है कि वो ये बात उनको पता होती है, अक्सर बंदों को पता होती है, पर उनका वो मैं कह सकता हूँ उसको इस तरह बयान करूँगा कि उनको थोड़ा सा एक क्लू की ज़रूरत होती है, या एक हाथ की ज़रूरत होती है कि उसको पकड़ के उस रास्ते में डालना होता है बंदे को। और मुझे उम्मीद है कि हो आप में से किसी ना किसी को मेरी कुछ बातें अच्छी लगती होंगी।

अच्छा, पहली नौकरी में कोई गलती ना हो ऐसा शायद ही मुझे लगता है किसी से के साथ हुआ हो। मेरा मुख्तलिफ कंपनीज में एक्सपीरियंस हो चुका है कि जब भी मैं किसी नई कंपनीज में जाता हूँ, मैं व्हेन माय फर्स्ट डे ऑफ जॉब, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोगों को बॉसेस के इवन के नाम भी नहीं याद होते, अपने फेलोज पे पूरा पूरा वीक गुजार देते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि मेरे साथ वाला बंदा बैठा हुआ क्या नाम है उसका। और कुछ हमारी तरह होते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं, जो जाते साथ पहले साहब से सलाम दुआ करते हैं, उनका नाम पूछते हैं, उनका हाल पूछते हैं, और यही एक अच्छा तरीका है अपने फ्रेंडली माहौल क्रिएट करने का और कम्युनिकेशन गुड करने का अपने तमाम फेलोज के साथ। इससे आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। और मेरे हिसाब से गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, क्योंकि गलतियां से ही इंसान सीखता है, क्योंकि अगर कोई बंदा गलती नहीं करता तो मेरे हिसाब से वो सीख ही नहीं रहा, या वो गलत रास्ते पे है या वो सीख ही नहीं रहा। अच्छा, आपने भी बताना है कि आपसे भी कभी कोई पहली नौकरी में कोई गलती ऐसी हुई जो आपको लगता है कि बाद में आप जब उस गलती को सोचते हैं या याद करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा अजीब काम हुआ है। इसमें मुझे पता है कि हमारे सुनने वाले लग बहुत से चेहरे मुस्कुरा रहे होंगे, और मुस्कुराहट भी ही हमारे जान है, और मुझे लगता है कि जहाँ से आपके चेहरों पर मुस्कुराहट शुरू होती है वहीं से हमारा सफ़र शुरू होता है। और हर एक बंदे के ज़िंदगी में ऐसे कोई ना कोई फ़नी मोमेंट आए होते हैं कि जो बंदा कहता है कि ये गलती तो वैसे नहीं होनी चाहिए थी मुझसे। हर बातें तो बहुत सी हो गई हैं, मुझे लगता है कि अब टाइम हुआ जाता है एक प्यारे से खूबसूरत से चुनमुन गाने का, और मिलते हैं गाने के बाद। और गाना है सतिंदर सरजान, और कोशिश करूंगा कि आपको ये सॉन्ग्स पसंद आएं। और ये मैं कहता हूं कि वन ऑफ फेवरेट प्ले सॉन्ग्स इन माय प्लेलिस्ट, एंड मुझे उम्मीद है कि ये सॉन्ग्स आपके भी प्ले लिस्ट में होगा। सो प्ले करते हैं ये सॉन्ग। मिलते हैं कुछ देर के बाद।

Once again, welcome back for the 97.1 FM and DAB. बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा सॉन्ग एंजॉय किया आपने सतिंदर सरताज का, और मैं कहता हूँ कि ये आपके मूड को और फ्रेशनेस के लिए बहुत अच्छा था, और मुझे लगा कि मेरी बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा मूड चेंज किया जाए और आपके तक ऐसी आवाज़ पहुँचाई जाए कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आए, और मेरी कोशिश होती है कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ही रहे। और वैसे भी मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को खुश ही करूँ और उनके दिलों को ऐसा ना पहुँचाऊँ कि बात ऐसी ना करूँ कि जो आपके दिल को लगे कि ये बात इसने गलत की है। तो खैर, बात हो रही थी पहली नौकरी की। तो पहली नौकरी में मुझे लगता है कि मैं बार बार कहता हूँ कि वो शख्स, कुछ ऐसे बंदे होते हैं, हर एक कंपनीज़ में ऐसे बंदे होते हैं जो पहले ही दिन आपको इस आपके होने का एहसास देते हैं।

0: और मुझे आपने भी बताना है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स था कि जिसने आपको हौसला दिया और आप जहां आपको लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अब कम हो रहा है, तो उसने आपको का हाथ थामा और कहा कि तुम कर लोगे, तुमसे हो पाएगा, तुम टेंशन ना लो। या ये कहा हो कि फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता सब आ जाएगा। वो बॉस, वो सीनियर या वो कॉलेजियस जिसने आपको ये एहसास दिलाया हो कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर नए होते हैं, पहले दिन हमें कुछ नहीं आता। ये बात तो हर एक के साथ एक्सपीरियंस हुई होगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आपको जब भी कहीं नई जगह पे जाते हैं, जाहिर सी बात है कि आपने कोई ऐसे है तो नहीं है कोई ऐसी खास आप में कोई बात कि आपको हर एक चीज़ ही आए कि एक एक चीज़ आपको नोट हो कि मैं ये भी पता है, मुझे वो भी पता है। आप जिस भी कंपनी में जाते हैं, हर एक ही कंपनी के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, अपना सिस्टम्स होता है, और कभी कभी लोग भी ऐसे मिल जाते हैं कि जो आपको डीमोटिवेट भी करते हैं साथ साथ, और जो लोग ऐसे होते हैं कोशिश किया करें कि इनसे दूर ही रहा करें। हर एक कंपनी में ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि जो आपके जो भी नया आने वाला है उसको उसकी टांग खींचने में ही रहते हैं। और जो अगर इस वक्त में मेरे भी कॉल ये सुन रहे हैं तो उनसे मैं सॉरी कहना चाहूँगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। इवन के साम कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनके आपको फर्स्ट टाइम नाम भी याद नहीं होते, आप उनको जानते भी नहीं होते, पर वो आपको अपने होने का एहसास देते हैं और आपको एक, मैं कहता हूँ कि एक वो सीढ़ी जो फर्स्ट स्टेप होता है उसका एक रुतबा पेश करते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो उस टाइप का एक बंदा, वो शख्स होता है कि वो एक लम्हा होता है कि जब आप डीमोटिवेट होने ही वाले होते हैं तो वो आपको मोटिवेट करते हैं और आपको हौसला देते हैं कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। और ज़िंदगी में ऐसा कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो आपका सफ़र आसान हो जाता है। और मुझे लगता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे सिर्फ इसकी मेहनत नहीं होती बल्कि किसी की रहनुमाई भी होती है। एक अच्छा टीचर आपको, मैं कहता हूँ कि अच्छा टीचर आपको मिल जाए तो आपके लिए बहुत ही एक खुशी की बात होती है। और आपको मैं कहता हूँ अच्छा टीचर एक नेमत है जो अपने दिल से आपको मेहनत करवाता और अपने दिल से आपको इस काबिल बनाता है कि आप एक मुकाम तक पहुँचें कि वो, इससे आपके टीचर्स को भी खुशी होती है। मैं कहता हूँ कि आपने अगर कभी सोचा आपने कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं तो आपको भी पढ़ाने वाले टीचर अभी भी वो वहाँ ही टीचर ही हैं। और अक्सर ये कहा भी जाता है कि टीचर जो है अपनी जगह पे ही रहता है और आपके बनाने वाला जो है इस वक्त बिजनेसमैन बन जाते हैं और आप इतनी अर्निंग करते हैं इस काबिल बनाता है तो वो बनाने वाला टीचर ही होता है। और वो टीचर सिर्फ वो नहीं होता है कि जो आपको आपके जहाँ आप पढ़े हैं या यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में वो टीचर नहीं होते, टीचर वो भी होते हैं जो आपको काम सिखाते हैं या जो भी आपको ऐसी कोई चीज़ सिखाते हैं। मुझे मेरी नज़र में वो भी टीचर है आपका, और उसकी भी रिस्पेक्ट उसी तरह किया करें कि जिस तरह आप अपने स्कूल कॉलेज में टीचर की करते हैं। और जो स्टूडेंट इस वक्त मुझे सुनने हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि कोशिश किया करें कि अपने टीचर्स को खुश रखा करें और उनको ऐसा एहसास होने ना दिया करें कि मैंने देखा है कोई कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इस अपने टीचर्स को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे वो कोई उनके बोझ डाल रहे हैं, कोई वो जब भी कोई बात करते हैं या कोई उनको असाइनमेंट देते हैं तो वो नहीं करके जाते। तो ऐसा नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि अपने टीचर्स की बात करें, क्योंकि मेरे नज़र में टीचर ही वो सीढ़ी है कि जो इसने आपको इस काबिल बनाया कि आप इस एक मुकाम तक पहुँचें कि कल को आप एक हैंडसम अर्निंग कर सकें। और आपकी ज़िंदगी में टीचर का बहुत किरदार है, और मैं कहना चाहूँगा कि टीचर ही वो सीढ़ी है जो आपको इस काबिल बनाती है या इस आपके में अकल और शऊर देती है। बातें तो बहुत सी होती हैं हमारे पास, पर टाइम की मुनासिबत से हमने इनको लिमिटेड करना होता है। और आपके मैसेजेस भी साथ साथ आ रहे हैं और कोशिश करूँगा कि आफ्टर एक हमारे दरमियान एक छोटी सी ब्रेक आ रही है और मैं कोशिश करूँगा कि ब्रेक के बाद आपके मैसेजेस भी शामिल करूँ कि आपका जॉब के में एक्सपीरियंस कैसा था और आपने कोई ऐसा गलती या आपने के कोई ऐसा शख्स जो आपको याद हुआ हो तो वो कौन था। تو کوشش کروں گا کہ آپ کے میسیجز جتنے ہو سکے میں شامل کروں. اور آپ نے ابھی بھی It's commercial time.
1: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
2: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
1: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
2: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہے, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
1: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا ہے یار, سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں.
2: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
1: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, ایسپلی پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ, اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر, یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے, تو پھر صرف اور صرف ایسپلی پیزا
3: فرام 12:30 پی ایم ٹو 11 پی ایم ایوری وینسڈے ٹو منڈے.
1: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32.
4: اریانا سپر مارکیٹ, 126-132 گراسنگٹن روڈ, NG8-3P, ناٹگم, منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM to 8 PM, سنڈے 10 AM to 8 PM. اریانا سپر مارکیٹ, فریشنس یو کین ٹرسٹ, پرائسز you'll love.
5: ہیلو, کہاں پر ہیں آپ؟
6: جی میں کہاں ہو سکتا ہوں, یا آپ کے دل میں یا پھر آفس میں؟
5: ارے جانے دیں, باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے, ہمارے لیے تو وقت ہی کہاں ہے آپ کے پاس.
6: آئے ہائے, ہر وقت مرچیں چبا کے رکھتی ہیں آپ.
5: ارے مرچوں سے یاد آیا, گھر میں نہ آٹا ہے, نہ دالیں ہیں, نہ چاول ہیں, اور نہ ہی آپ کی کافی موجود ہے, اور اس کے علاوہ گروسریز کی ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن آپ تو آپ ہیں نا.
6: تو فکر کس بات کی ہے, پاک فوڈز ہے نا, جہاں پر گروسریز کی تمام آئٹمز نہایت ہی مناسب ریٹس پر اویلیبل ہیں. When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, جو نام ہے معیار کا.
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: Hits.
10: Music never sounded better.
11: Fazan 97.1 FM.
10: I love it.

वंस अगेन वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 97.1 एफएम वन डैब। मैं आपके मैसेजेस ही पढ़ रहा था और मैं वेलकम करता हूँ जो इस वक्त मेरे साथ अभी अभी शामिल हुए हैं, और आपको बताता चलूँ कि आज का हमारा टॉपिक है आपकी पहली नौकरी का दिन कैसा गुजरा और आपने या आपकी सैलरी जो पहली सैलरी थी वो कैसे उसके एहसास कैसा था। और मैं आपको अपने प्रोग्राम ड्राइव जोन में वेलकम कहता हूं और उन तमाम हजरात को जो इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं या इस वक्त शिफ्ट ऑफ करके घर को जा रहे हैं उनको कहना चाहूँगा कि हैव अ सेफ ड्राइव। मैसेजेस तो बहुत से होते हैं पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैसेजेस से ज़्यादा आपको इंटरटेन किया जाए, और इंटरटेनमेंट का ज़रिया वही है जो आपको पता है कि इंटरटेनमेंट का ज़रिया। कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी पसंद के सॉन्ग्स लगाए जाएं या आपके मैसेजेस शामिल किए जाएं, और मुझे पता है कि एक बंदा अगर आप टाइम निकाल के आपको मैसेज करता है तो वो मैसेज आप अगर शामिल नहीं करते तो वो कितना डिसार्ड होता है। तो मैं उन अफराज से तमाम जो भी मेरे लिसनर हैं जो मुझे मैसेज करते हैं जिनका मैसेजेस मैं शामिल नहीं कर पाता, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपसे बहुत दिल से माजरत, क्योंकि हमारे पास टाइम का मैनेज करना होता है और आपके मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे मैसेजेस शामिल करूँ पर नहीं कर पाता, क्योंकि वक्त ही है कि इंसान के पास जो हर, मैं कहता हूँ कि यूके की लाइफ ही कुछ ऐसी है कि यूके में किसी के पास किसी के लिए कोई वक्त नहीं है। और मैं इवन के कुछ ऐसे भी मैंने बंदे देखे हैं कि जो एक एक मंथ अपने घर पे भी कॉल पे बात नहीं करते उन, क्योंकि वो सुबह शिफ्ट लगाते हैं, ओवर टाइम्स लगाते हैं। फिर इवन के जो स्टूडेंट्स के हैं उनको उनका भी मुझे पता है कि वो जब स्टडी भी करते हैं साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, फिर थके हारे आके सो जाते हैं, फिर सुबह इसी तरह कंटिन्यूसली वो पूरा वीक काम करते हैं और हफ्ता हफ्ता बात ही नहीं होती। और जब टाइम मिलता है तो जब यही है कि उनके नज़र में जब मैं फ़ोन की गैलरी खोलता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ ऐसी यादें या कुछ ऐसी अपनों की तस्वीरें या कोई भी ऐसी चीज़ देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। तो आपको अभी दिल खुश होता है कि नहीं होता ये आपने ज़रूर बताना है। हाँ जी, मैसेज शामिल करते जाएं तो पहला मैसेज किसका लें। हाँ, संजय फ्रॉम डर्बी। आप संजय कहते हैं कि आरजे मौजूम, मेरे पहली जो जॉब थी वो वेयर हाउस में थी और मैं आज भी उस जॉब को इसलिए याद करता हूँ कि मैंने अपना लंच मिस कर दिया था इस नर्वसनेस में। और सुपरवाइज़र कंपनी में अब मैं, अच्छा मुझे आपकी बात अब समझ आई कि आप कह रहे हैं कि मैं एक वेयर हाउस में जॉब कर रहा था और जॉब मेरी फर्स्ट डे इतनी नर्वसनेस थी कि मैंने अपना इवन के लंच भी मिस कर दिया था। और अब मैंने हिम्मत नहीं हारी और कुछ ऐसे मुझे उधर मेरे वर्क फेलोज़ मिले जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और फिर उन मैं अब इस कंपनी में एज अ सुपरवाइज़र हूँ। जी, बहुत सुनकर बहुत खुशी हुई संजय।

नेक्स्ट मैसेज शामिल करते हैं। नेक्स्ट मैसेज किसका आया, किसका आया? अच्छा, नेक्स्ट मैसेज है निशा, निशा फ्रॉम नॉटिंगम। अच्छा जी, वेलकम नॉटिंगम वालों, नॉटिंगम वालों को स्पेशल वेलकम, क्योंकि ये हमारा जो फजल एंड 7.1 FM, हम भी लाइव फ्रॉम नॉटिंगम ही हैं। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। और आप लिखती हैं कि मेरी पहली सैलरी से मैंने अपनी अम्मी के लिए शॉल खरीदी थी, आज भी वो इसे संभाल कर रखती हैं। अच्छा, तोहफा जो होता है ना, तोहफा वो इंसान के लिए बहुत मायने रखता है। मेरे हिसाब से वो उसकी इतनी कीमत नहीं होती जितनी उस प्यार की कीमत होती है। कि आप अगर किसी, कोई बंदा आपको अगर कोई तोहफा देता है तो वो इस नीयत से देता है कि शायद वो आपको चेहरे पे खुशी ला सके। और जो वालदैन होते हैं उनके लिए उनकी जो औलाद की कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसा तोहफा जो फर्स्ट उनके लिए तोहफा होता है, वो एक, मैं कहता हूँ कि बहुत मायने रखता है। और हर एक, मुझे लगता है कि आपने भी बताना है कि हर एक माँ बाप ऐसा ही होता है कि आपकी जो भी फर्स्ट चीज़ जो आपने अपनी पहली तनख्वाह से उनको लेके दी होगी और ज़्यादातर ने वो संभाली होगी। और इसके अलावा जिनके इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आपको उनकी वो यादें वो ताज़ा हुई होंगी और उनके वो बातें कुछ ऐसी या उनकी कुछ ऐसी नसीहतें याद आई होंगी बातों बातों में। तो सबके साथ होता है, ये एक ज़िंदगी चल रही है, ज़िंदगी का एक रूल है कि जिसने आना है उसने जाना है। खैर, साथ साथ मैसेजेस भी शामिल करते हैं। इमरान फ्राम UK। अच्छा, आप कहते हैं कि मैं स्टूडेंट था और पार्ट टाइम जॉब करता था, पहली बार अपनी कमाई से खुद शॉपिंग की तो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने भी बात की थी कि अगर आप ये जो आपकी पहली सैलरी होती है ये आप में कॉन्फिडेंस लाती है, क्योंकि आप पहले पॉकेट मनी पे चल रहे होते हैं, माँ बाप की पॉकेट मनी पे चल रहे होते हैं कि उनको, उन्होंने लिमिटेड सी आपको एक पॉकेट मनी देनी होती है। और अगर कोई चीज़ आपके दिल में ख्वाहिश होती है तो आप, कोई कोशिश होती है कि आप वो मांगें। तो समटाइम इस तरह भी होता है कि वो मना भी कर देते हैं कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, या आपकी पॉकेट मनी से लो, या ऐसी कोई चीज़ जो आपको की ख्वाहिश हो कि ये चीज़ मैंने लेनी है। और समटाइम बंदे की ये भी ख्वाहिश होती है कि आप अपनी ही सैलरी से वो चीज़ खरीदूँगा, मैं पहली सैलरी जब मेरी आएगी तो मैं ये चीज़ खरीदूँगा। तो शॉपिंग का एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस वाकई पैदा होता है। मेरा भी एक्सपीरियंस इसी तरह था कि मैंने जब अपनी पहली सैलरी रिसीव की थी तो बहुत सा एक अलग ही वाइब उसकी थी।

अच्छा, नेक्स्ट मैसेज शामिल करते हैं प्रिया फ्रॉम लीड्स, और आप कहती हैं कि पहले दिन ऑफिस में सब ने मुझे कहा कि रिलैक्स, और यहाँ सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो जुमला आज भी मुझे याद है। जी बिल्कुल, कुछ ऐसे जुमले होते हैं कि जो आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं, और कुछ ऐसी नसीहतें होती हैं कि जो आपको ज़िंदगी भर याद रहती हैं। क्योंकि मैं शुरू प्रोग्राम के शुरू

उसका फेलियर होने का सबसे बड़ा वजह ही वो खुद ही होता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि मुमकिन नामुमकिन काम को भी मुमकिन करना अपनी मेहनत से करना चाहिए। और वाकई कुछ ऐसी बंदे होते हैं या कुछ ऐसे जुमले होते हैं जो इंसान को उसकी ज़िंदगी में एक सबक दे जाते हैं और एक अलग सी ही एक जुमला जो लाइक मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह एक कोई शख्स आपको कह दे कि आपसे कोई गलती हो गई है या आपसे कोई चीज़ ऐसी जिस तरह मैंने कहा कि मशीन का बटन भी नहीं मिलता इवन के कि जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको ये नहीं पता हो कि ये ऑपरेट किस तरह होती है जबकि उनकी एज अ ऑपरेटर उधर जॉब होती है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपको पहले दिन अगर जॉब में बिठाया गया है तो आपको वो सब कुछ उसका हिफ्ज़ होना चाहिए या सब कुछ आपको आना चाहिए। ये तो आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं। वैसे भी कंपनीज के रूल्स होते हैं कि आप जब भी किसी नई कंपनी में जाते हैं तो वो आपको पहले काम सिखाते हैं। इससे घबराना नहीं चाहिए, बस आपको इनमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। और अगर आपसे गलती हो गई तो आप कोशिश करें कि अपने सीनियर से ये चीज़ डिस्कस करें कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही और आप मुझे इस हवाले से गाइड कर दें। और उम्मीद है कि वो सीनियर्स भी जो सुन रहे हैं वो अपने जूनियर्स को इसी तरह गाइड और अच्छी गाइडलाइन देते होंगे।

अच्छा, ज़िंदगी में कुछ ऐसे गिफ्ट्स भी होते हैं ये जो आपको बंदों गिफ्ट जो आप किसी को दें, आपको भी याद रहते हैं और उनको भी याद रहते हैं। इसी तरह आयशा हैं फ्रॉम बर्मिंगम, और आप कहती हैं कि पहली तनख्वाह से मैंने अपने छोटे भाई के लिए फ़ुटबॉल गिफ्ट किया और इसकी खुशी आज भी याद है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, जो आपके छोटे बहन भाई होते हैं वो अपने बड़े बहन भाई को एक, मैं कहता हूँ कि जो भाई होता है वो बाप के का दर्जा रखता है, और आपको अपने बड़े भाई का एहतराम करना चाहिए और उनकी बातें भी माननी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो वो जो कहते हैं वो असल में इस तरह होता है कि मैं ये कहता हूँ कि जो बड़े होते हैं जाहिर सी बात है वो भी आपकी उम्र से गुजर के गए होते हैं और उनको पता होता है कि ये चीज़ इस तरह होती है, ये चीज़ गलत है, आपके लिए गलत है, आपके फ्यूचर के लिए गलत है, और जो चीज़ वो समझाते हैं उनको समझना भी चाहिए। इसके अलावा अगर वो चीज़ कोई आप उनसे डिमांड करते हैं और वो पूरी करते हैं तो वो आपकी जो खुशी होती है या उनके चेहरे पर जो खुशी होती है आपके लिए वो एक अलग ही सबक अंबेज़ और मायने रखती है। और इसी तरह आगे मैसेज शामिल करते हैं, खैर मैसेजेस तो बहुत से हैं पर मैं कोशिश करूंगा कि ये लास्ट मैसेज हो, और इसके बाद एक प्यारा प्यारी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर रखी है, और प्लेलिस्ट है मिस्टर हाँ, ये बहुत अच्छी प्लेलिस्ट मैंने निकाली है अरिजीत सिंह की। अच्छा बस आखिरी मैसेज में जो भी लकीस्ट पर्सन है मैं देखता हूँ। अच्छा फारूक, हाँ चलें जी फारूक साहब, अगर आप मुझे अभी भी सुन रहे हैं तो आप वन ऑफ लकी पर्सन इन माय लिस्ट, और मैं आपके अभी मैसेज शामिल करता हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं इस वक्त मोटरवे पर ड्राइव कर रहा हूँ, आज का टॉपिक सुनकर अपनी पहली टैक्सी जॉब याद आ गई जब जीपीएस ने मुझे गलत रास्ते पर भेज दिया। जी इसी तरह होता है, जिस तरह आप फर्स्ट टाइम, अगर ये इस तरह मैं कहना चाहूँगा कि आप फारूक इस तरह नहीं होता, ट्रेनिंग लेनी चाहिए जो भी चीज़ होती है, पर मुझे लगता है कि इस तरह नर्वसनेस की वजह से होता है कि आप बेशक आप ट्रेनिंग पे हों, आप प्रॉपर ट्रेनिंग भी लेते हों, तो जब आप फर्स्ट टाइम खुद प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपकी नर्वसनेस से जो है ना ये चीज़ें होती हैं, और ये हर इंसान के साथ होती हैं, और कोशिश यही किया करें कि अगर इस तरह का कोई मामला हो तो आप गाइडलाइन ले लें या अपने दिमाग को ठंडा रखें और भी जो है पेशेंट रहें और कोशिश करें कि आप जो है ना अपने काम पे ध्यान दें, आप और बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि इस तरह की जब भी काम होता है, जब भी आपकी फर्स्ट डे होता है तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, पता नहीं

इनको मेरा एक्सेंट अच्छा लग रहा होगा या इनको मेरी समझ आ रही होगी, इवन कि आपको भी एक्सेंट उनकी समझ नहीं आ रही होती। और समटाइम इस तरह होता है कि कोई ऐसा पैसेंजर आपके साथ बैठ जाता है कि जिसको लैंग्वेज नहीं का डिफर होता है, और जब आप फर्स्ट टाइम होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि इसके साथ किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। गाइड तो आपको किया जाता है, पर सम नर्वसनेस की वजह से आपको पता नहीं चलता कि इनके साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है क्या नहीं करना, तो होता है ऐसा। और मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हैव अ सेफ ड्राइव फारूक। और चलते हैं आप प्यारे प्यारे सॉन्ग की तरफ, और सॉन्ग है अरिजीत सिंह का, और सुनते हैं प्यारा सा सॉन्ग।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं फजल 97.1 एफएम एंड आल्सो डैक। आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और अभी भी सुन रहे हैं और वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग पल पल दिल के पास। और मेरे मैं कहता हूँ कि ये प्लेलिस्ट हटाने का दिल ही नहीं किया, तो मैंने कोशिश मैंने सोचा कि आपके लिए बैक म्यूजिक भी यही रख लूँ। आप में से किस किस को अरिजीत सिंह पसंद है ये ज़रूर बताइएगा, और क्योंकि हम सिर्फ कम्युनिकेशन हमारा मकसद नहीं होता, आपको इंटरटेन करना भी हमारा मकसद होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इंटरटेनमेंट भी दी जाए, और अगर आपके कोई भी पसंद का कोई भी सॉन्ग जो आप किसी के लिए लगवाना चाहते हैं या अपने लिए लगवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, बंदा ना चीज़ आपके लिए हाजिर है। जो इस वक्त मेरे साथ नए शामिल हुए हैं उनको मैं फजल 97.1 एफएम एंड डैब की तरफ से वेलकम कहता हूं, और आप सुन को बताता चलो कि आज का प्रोग्राम जो जिसका मौजू है पहली नौकरी और पहला दिन कैसा गुजरा, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ड्राइव जोन। और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, शामिल होने का तरीका ये है कि आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपना प्यारा सा पैगाम, अपना प्यारा सा नाम और अपने प्यारे से शहर का नाम लिख के। जिस वक्त नए शामिल हुए हैं उनको बताते चलूँ कि व्हाट्सएप नंबर है 01157100971। अच्छा दोस्तों, मेरे नज़र में कुछ ऐसे लम्हात होते हैं कि जो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते, और उनमें कुछ ऐसे एहसास भी होते हैं कि जो बंदा कहता है कि ये ज़िंदगी में मेरे बहुत एक अच्छा एहसास था और मैं कहता हूँ कि हाँ अब मैं ये कर सकता हूँ। तो जो मुझे लगता है कि ये पहली प्रमोशन का वो एहसास नहीं होता और ना ही कोई ये किसी और चीज़ के लिए एहसास होता है, और मेरे नज़र में ये एहसास पहली नौकरी के दिन आफ्टर फ्यू डेज जब आपको काम समझ में आने लग पड़ता है तो आप कहते हैं कि मुझे ये कुछ कुछ समझ आने लग पड़ा है, अब ये मज़ा अब मैं काम कर सकता हूँ, अब मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, हाँ मुझे ये भी समझ आ गया, और आप दिल ही दिल में खुश हो रहे होते हैं। और आपको मुझे लगता है कि वो आपकी जब प्रमोशन होती है उससे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती है कि आप ये चीज़ सीख रहे हैं। और यही चीज़ आपके दिल में डर ख़त्म करती है और काम करने का जज्बा पैदा करती है, और अगर आप डर गए तो समझो हार गए। ये फितरत है कि शुरू शुरू में हर एक इंसान को हर एक चीज़ मुश्किल लगती है, और टाइम के साथ आप अगर चीज़ों को पहचानना शुरू कर दें और मेहनत से पहचानना शुरू कर दें, ये नहीं है कि आया और बस गया, वो गया और ये आया, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि जो भी काम आप नया शुरू करने जा रहे हैं तो उसको सीखें, उसको इस तरह सीखें कि आपको एक हफ्ता बल्कि मैं कहता हूँ कुछ दिनों की बात हो कि वो आपको काम इतना एक्सपर्ट हो जाए कि आपका सीनियर भी आपसे खुश हो कि ये बंदा।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है?
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। ਹੋਰ ਕੌਣ? ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ, ਤੇਜ਼ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
4: ਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇ, ਆਪਕੋ ਤੋ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਗਾ।
3: ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਨੋਟਿੰਗਮ ਰੋਡ, ਨਿਊ ਬੇਸਫੋਰਡ, ਨੋਟਿੰਗਮ।
4: ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮੈਂ ਉਨਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇ ਲਈ। ਨੰਬਰ ਕਿਆ ਹੈ?
3: ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ, 0115-671-3677। ਪਿਓਰ ਜਿਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਓ ਜੀ।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: वंस अगेन वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 97.1 FM एंड आल्सो डैप। और साथ आप सुन रहे हैं अरिजीत सिंह को, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसके सॉन्ग्स पसंद आ रहे होंगे। बस क्या करें जी, वक्त की नज़ाकत ऐसी है कि वक्त अब करीब तरीन है, और उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और जिनको अच्छी नहीं लगी तो उनको कहना चाहूँगा कि मैं आपसे बहुत दिल से माजरत करता हूँ।
1: जब बाकी दुनिया धुंधली लगे, जब रात भी उजली,
0: और नादान परिंदा समरी की माफ़ कर दीजिएगा, और जो इस वक्त मेरे साथ नए शामिल हुए हैं, अभी भी शामिल हुए हैं, उनको कहना चाहूँगा कि आपका फजल 97.1 FM की तरफ से वेलकम और एक प्यारा सा सलाम। और ये जो सॉन्ग चल रहा है, ये मैं आपको डेडिकेट करता हूँ जो अभी अभी मेरे साथ शामिल हुए हैं। उम्मीद है आप हैरियत से होंगे, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उम्मीद है आप हैव बस रेफ ड्राइव।

बातें तो बहुत सी हैं, पर बातें क्या करें, हम टाइम की मुनासिबत है, और टाइम की मुनासिबत ये है कि हमें इतमन ये भी नहीं पता लगता कि कब कमर्शियल ब्रेक आ जाती है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को भी मैनेज करता चलूँ। और बात हो रही थी नौकरी की, जो नए शामिल आने हुए हैं अभी अभी, उनको बता चलूँ कि आज हमारा टॉपिक था आपका नौकरी का पहला दिन कैसा गुजरा, और आपकी व्हाट अबाउट योर फर्स्ट जॉब। उसमें कुछ ऐसी यादें थी, कुछ ऐसे पैगाम थे जो हमने साथ साथ शामिल किए, और कोशिश थी कि आप सब के पैगाम शामिल करें। अब जो सॉन्ग लगा है, मेरा दिल नहीं कर रहा कि आप किसे बोलूँ, और मुझे लगता है कि ये भी वन ऑफ फेवरेट सॉन्ग्स फॉर इवन एवरी लिसनर। पर बातें भी साथ साथ करनी होती हैं। बात हो रही थी कि लोग जब किसी भी नए ऐसे नए प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो जब थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो उनको समझ आने लग पड़ती है काम काज की, और उनको ये एहसास होने लगता है कि अब मैं ये काम कर सकता हूँ। पहले पहले वो पुराने लोग, जो लोगों के नाम नहीं याद होते, फिर आप नाम याद करते हैं, फिर आप काम का तरीका समझते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जगह, वो लोग, वही काम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, पहली नौकरी सिर्फ हमें पैसा नहीं देती, बल्कि इत्मान देती है और सिखाती है कि अगर इंसान मेहनत करे तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो वो आप मुमकिन को भी ना ना मिक्स हो गया, आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। आपको बताया ना कि ये सॉन्ग ही ऐसा है कि बंदा कहता है कि बस सुन ही जाऊँ।

0: अच्छा, कभी कभी ऐसी बातें भी होती हैं जो कभी कभी आपके ख्वाब होते हैं, जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आपके ख्वाब होते हैं कि मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, जब मैं कमाना शुरू करूँगा। तो जैसा कि ख्वाब में से एक ख्वाब है कि आप अपने ये सोचते रहते हैं कि मैं अपनी फैमिलीज़ की मदद करूँगा कुछ, या अपने बिल्स खुद अदा करूँगा, या अपनी शॉपिंग खुद करूँगा, और इसके अलावा अपनी जब मैं नौकरी शुरू करूँगा तो मैं अपने फलां ट्रिप पे जाऊँगा या फलां जगह घूमने जाऊँगा। और फिर जब आपकी पहली सैलरी आती है तो आपका सर फख्र से बुलंद होता है और आप अपने आप से एक बातों से बातें निकालते हैं और बातें करते हैं अपने आप से कि मैं आप ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया, और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं और अपने आप दिल ही दिल में खुश होते हैं, और आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती, आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे काम आती है। अगर आपका फर्स्ट जॉब पे एक्सपीरियंस बैड रहा तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने बैड तो रहा होगा पर मुझे लगता है कि आपने उन गलतियों से सीखा भी होगा और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया होगा, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हुई होगी। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी कभी अपने आप को भी शाबाश दिया करो, और हम अक्सर दूसरों की तारीफें करते रहते हैं लेकिन अपनी मेहनत को भूल जाते हैं। और आज अगर आप अपने साथ ईमानदार नहीं हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप किसी के साथ ईमानदार नहीं हैं। ये बात बहुत गहराई की बात है और मुझे लगता है कि कुछ लोगों के दिल में ये बात सोच पर में डाल दी होगी कुछ लोगों की, हाँ मैंने कभी अपने आप से तो कोई बात ही नहीं की, या अपने आप को तो कभी कुछ कहा ही नहीं है। जैसे कि अगर आपने अपने सारा दिन ईमानदारी से काम किया तो आप अपने आप के साथ फख्र महसूस करेंगे कि मैंने आज अपना काम दिल से किया और जिस चीज़ के मुझे काम के मुझे पैसे मिलते हैं वो काम मैंने किया।
1: और सुनहरी मैं लगती हूँ।
0: अच्छा, ये चीज़ मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में कोई ऐसा लम्हा आया है कि जहाँ आपने अपने काम को कॉन्फिडेंस से कहा हो कि वाह क्या काम किया आपने? और मुझे लगता है कि ये शुरू शुरू में ये काम होते हैं कि जो ऐसी चीज़ जो आपको पहले नहीं पता होती, जब आप करते हैं तो आपके दिल में एक अलग सी खुशी पैदा होती है कि मैंने ये काम किया आज, और आपके दिल में मज़ीद कॉन्फिडेंट आता है वो चीज़ करने को, और आप जब नेक्स्ट डे आप उसी चीज़ को दोहराते हैं तो आप के अंदर वो पहला कॉन्फिडेंस जो होता है, जो पहली नर्वसनेस होती है, तो मुझे लगता है कि वो आप बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती है। और मेरी उम्मीद है कि आपको भी मेरी ये बातें अच्छी लग रही होंगी, साथ साथ आपको सॉन्ग्स भी अच्छा लग रहा होगा, और मैं ये बातें जो कर रहा हूँ वो एक प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, और मैं इसीलिए बार बार अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ ताकि आपको ये एहसास ना हो कि ये बातें सिर्फ ऐसी बातें हैं जो बस हमारे साथ तो नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये हर एक जो बंदा कमा रहा है ना, वो हर एक के साथ ये चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ ऐसी है कि ना ये पहली प्रमोशन पे आती है ना ये और किसी चीज़ पे आती है, ये सिर्फ एहसास बस बंदे को पहली सैलरी या जब पहली जॉब करता है तो उसी वक्त आता है। और आपने भी ये चीज़ ज़रूर बतानी है, और साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि वक्त की घड़ियाँ बिल्कुल करीब तरीन आ गई हैं और पता ही नहीं चला कि किस तरह वो 2 घंटे गुजर गए हैं। तो मैं जाते जाते भी कुछ मैसेजेस शामिल कर देता हूँ, यही कर सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप एक टाइम निकाल के मैसेजेस करते हैं तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि मेरा मैसेज, या वेट करते हैं, कुछ लोग इवन वेट करते हैं कि मेरा मैसेज कब आएगा, मैं कब, और मैं ऐसे भी कुछ जानता हूं दोस्तों को या कुछ लिसनर्स को भी जानता हूं कि वो इवन के जब मैसेज करते हैं साथ ये भी कहते हैं कि जल्दी जल्दी मेरा नाम लेना, मैंने स्नैप बनानी है। ऐसी फरमाइशें ना किया करो, किसी टाइम आपका मैसेज नहीं भी देखते, कितने मैसेजेस आ रहे होते हैं, ऐसा ना किया करो प्लीज़। ज़रूरी है कि आपने अपना दिल खुद ही तोड़ना है।

0: हाँ जी, वक्त की घड़ियाँ बहुत करीब जा चुकी हैं और आपसे इजाज़त लेने का भी वक्त करीब आ गया है, तो उससे पहले मैं 2-3 मैसेजेस शामिल करके फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपको कहूँगा कि आप इंजॉय करें ये अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स। और अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं उससे के लिए आपसे माजरत करूँगा, और अगर कोई बात मेरी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा। हो सकता है कि कल के शो में मैं वो आपके एहसास या वो बात अपने शो में ज़रूर शामिल करूं, बल्कि कल के नहीं मंडे को।
1: इश्क है या क्या है?
0: मंडे का हम इसी टाइम पे आपके साथ शामिल होंगे, और आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपना कीमती वक्त हमें दीजिएगा।

पहले भी मैंने बात की है कि गिफ्ट्स गिफ्ट होते हैं, और गिफ्ट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और इस चीज़ से नहीं करना चाहिए, बस ये देखना चाहिए कि आपके लिए वो गिफ्ट कितने प्यार से लिया गया है। और इसी तरह एक मैसेज मैं अभी पढ़ रहा था, मीरा फ्रॉम बर्मिंगम, आप कहती हैं कि मेरी पहली सैलरी बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने अपने अब्बू के लिए एक घड़ी खरीदी, आज भी वो इसे बड़े फ़ख्र से पहनते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि वालदैन, मैंने पहले भी बात किया, पहले भी एक मैसेज शामिल किया था शुरू में, कि इसी तरह होता है कि वालदैन के लिए अपनी औलाद की जो पहली तनख्वाह होती है वो भी काबिल फ़ख्र होती है, और जो वालदैन होते हैं उनके लिए जो पहली चीज़ आप खरीदते हैं वो भी इसको इस तरह संभाल के रखते हैं एक कीमती चीज़ की तरह, चाहे उसकी कीमत कम क्यों ना हो,

अच्छा, इसी तरह एक बात करते चलें, एक और मैसेज है तारिक फ्रॉम लीड्स। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मेरी पहली बार फोग लिफ्ट चला रहा था। अच्छा, मैं पहली बार फोग लिफ्ट चला रहा था, इतना घबराया हुआ था कि ब्रेक का वक्त भी याद ना रहा, और आज मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। जी, इसी तरह है कि अगर आप अपने वक्त है तो नर्वसनेस है, ये मुझे लगता है ये नर्वसनेस है, और अगर आप पहली जॉब पे एक मेहनत के साथ कंटिन्यूसली काम करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको प्रमोशन भी मिलती है, और आप अगर लॉयल रहें किसी के साथ तो आपको उसके साथ भी अच्छा ही करता है। और इसी तरह मैं एक और मैसेज शामिल करूंगा, और ये मैसेज मुझे लगता है कि आखिरी मैसेज होगा, और इसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा।

अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग सा मैसेज है संजय। अच्छा संजय संजय संजय आप वो वाले तो नहीं है जो पहले शामिल किया, आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा आप कहते हैं कि नहीं ये वो वाले नहीं लग रहे, ये कोई और है। अच्छा आप कहते हैं कि मेरी पहली जॉब में मुझसे ज़्यादा, अच्छा मेरी पहली जॉब में मैं ज़्यादा डर इंग्लिश बोलने का था, लेकिन मेरी कॉलेजियस ने बहुत हेल्प की, आज मैं नए लोगों की मदद करता हूँ। जी इसी तरह जो जो यूके में नए नए आते हैं उनके एक्सेंट मैच नहीं करता, बेसिकली ये एक्सेंट की मुझे लगता है बात कर रहे हैं कि एक्सेंट मैच नहीं करता, आपको समझ नहीं आती कि आपके दूसरे जो भी फेलोज़ हैं वो क्या कर रहे हैं या आपके बॉसेस क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप उस उनकी बात नहीं समझ रहे, जस्ट आप अपना यस यस कह के बस टाल देते हैं, और जब बाद में आप देखते हैं सोचते हैं कि ये बात क्या थी तो वो बात और होती है और आप किसी और बात पे यस यस कर रहे होते हैं समझ के, तो इस तरह होता है। और आप बहुत सुन के खुशी हुई कि आप दूसरों की हेल्प करते हैं, ये चीज़ें देखते हैं मैनेज करते हैं, और मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है आपके लिए कि आप दूसरों को भी साथ साथ ले के चलते हैं। खैर वक्त अब हुआ जाता है आपसे इजाज़त लेने का। अगर किसी को कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उनसे माजरत करता हूँ, और जिनके मैसेजेस शामिल नहीं कर सकता उनसे भी माजरत करता हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम समातों का जिन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया।

सुन आप सुन रहे थे प्रोग्राम ड्राइव जोन। इसमें हमने बहुत सी यादें ताज़ा की, बहुत सी बातें की, कुछ मैसेजेस भी शामिल किए, कुछ आपकी राय भी ली और कुछ आपकी भी यादें ताज़ा की। जिन्होंने मैसेज नहीं किया उन्होंने भी कुछ ना कुछ अपना पास्ट याद किया होगा। जो लोग इस वक्त मुझे ड्राइव करते हुए सुन रहे थे उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। जो वो तमाम लिसनर्स जो दुनिया के किसी भी कोने से मुझे सुन रहे थे, उन तमाम लिसनर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और मिलेंगे आपके साथ कुछ मंडे को इसी टाइम पे शाम 5 बजे 2 घंटे सिर्फ फजा 97.1 FM विद आरजे मौसम। फिर बेकरारी कैसी, प्यार भरा शुक्रिया और अल्लाह नेहबान।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: पिशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: You are listening 97.1 FM.

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: टर्न इट अप रेडियो फाजा 97.1 FM।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन दैट प्लेज
5: फुट टैपिंग म्यूजिक.
6: फजान 97.1 एफएम,
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 एफएम, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 एफएम एंड डेप.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेडन किंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 077152।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सेलसियर नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
8: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
3: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो. आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए.
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं.
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है.
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता.
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है.
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ.
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231. कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा.
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8, 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: This is a public service announcement.
11: Everybody. The station.
12: That plays
13: foot tapping music.
14: हजार 97.1 FM।
15: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
16: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

0: हवाओं पे लिख दो।
1: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे रहे।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 97 2 ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा, रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ।
7: You are listening to Radio Fazal 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

0: हे चढ़ गेले बसले, हे तू असले कंगन किधर है बेलाला।
1: सर सर,
2: आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनू कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: You are listening to 97.1 FM.